तुम सारे का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ, मैं आ तुम्हारी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर माटी दी महक। श्रोताओ कर देना अज के कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे दे गीते कने।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

ये तो हम अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो सारे इन्हीं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ, इस वक्त तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक जी। श्रोताओ ता बढ़ते ना कार्यक्रम च अगे कने सुनदे ना कार्यक्रम दा अगला गीत। तुहां सारे इयां बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज।

नमस्कार दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के चमकते सितारों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं आपके अपने शहर कांगड़ा में। तो याद रखिएगा, 28 जून 2026 रविवार को सुबह ठीक 9 बजे से जीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा में ये भव्य शाइनिंग स्टार फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7710277122 या फिर 7888891956। धन्यवाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग माँ।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा माँ, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों, सब्जियों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं, कुछ नहीं, पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई, गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो, ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
4: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों
4: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
6: मेरा
10: क्या कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
6: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
11: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
12: मोहित, मेरा इस्तीफा।
13: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार।
12: सॉरी यार,
13: काम कीजिए आप लोग।
11: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला था।

दोस्तों 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

सो जब भी मन चाहे आपका सुकून, तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 MHz से।
1: देखता रहूं।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। दोस्तों कार्यक्रम आप सभी सुन रहे थे गीत सुहाने नए पुराने वही एहसास हर बार नया। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे थे अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

नमस्कार दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के चमकते सितारों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं आपके अपने शहर कांगड़ा में। तो याद रखिएगा, 28 जून 2026 रविवार को सुबह ठीक 9 बजे से जीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा में ये भव्य शाइनिंग स्टार फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7710 77122 या फिर 7888891935। धन्यवाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों समझियों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर कोई बात नहीं
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं कुछ नहीं, पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई गहने गाड़ी 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
4: Excuse me, sir. ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों?
4: सर यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके.
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
6: मेरा
10: क्या कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
6: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
11: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
12: मोहित मेरा इस्तीफा।
13: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग।
11: एचआईवी एड्स अपने पन को नहीं मार सकता।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। सुबह के 9 बज चुके हैं और इस समय आप सभी का इंतज़ार रहता है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का समय जो है वो अब शुरू हो गया है और आज के इस कार्यक्रम को लेकर आई हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और सुबह की शुरुआत कर चुके होंगे। श्रोताओं, सुबह की शुरुआत आप लोगों ने अपने काम से कर दी है और हमारा भी एक काम रहता है, फ़र्ज रहता है कि आपका मनोरंजन करवाना है, आप तक जानकारियाँ पहुँचानी है। उसके लिए हम भी समय समय पर आपके समक्ष कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला के ज़रिए आते रहते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं रोज़ाना की तरह एक बहुत ही अच्छे विचार के साथ। श्रोताओं, सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन उसकी मंजिल सबसे सुंदर होती है। बिल्कुल इसी सुंदर से विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हमने कर दी है। जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है, इस कार्यक्रम में अभिनंदन है। और जो लोग अभी तक कार्यक्रम में नहीं जुड़े हैं उनसे हम यही कहेंगे, इसे जल्दी से जल्दी कार्यक्रम के साथ जुड़ जाइए। और एक बार फिर से आपको बता दें, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का समय रहता है प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का। और ये 2 घंटे का सफ़र हम बिताते हैं आपके साथ और आप बिताते हैं हमारे साथ, यानी कि रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत विचार के साथ हो गई है तो क्यों ना अब गीत के साथ भी कर दी जाए। तो लीजिए कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं कार्यक्रम के पहले गीत के साथ, जिसे हम लेकर आए हैं गोपी फिल्म से, आवाज़ रहेगी लता मंगेशकर की।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला की शुरुआत हमने की इस प्यारे से गीत के साथ। और श्रोताओं, जिंदगी में भी अकेले हम नहीं चल सकते हैं, किसी ना किसी को साथ लेकर चलना ही पड़ता है। कोई ना कोई हम सफ़र हमारे साथ हो तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट जाती है। तो इन रिश्तों को संभाल के रखिए और रिश्तों को निभाना हमें आना चाहिए। हर रिश्ते को निभाने के लिए दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए। तो श्रोताओं, रिश्ते बहुत नाजुक डोर के साथ बंधे होते हैं और इस डोर को किस तरह से हमें संभाल कर रखना है ये हमें आना चाहिए। और हर रिश्ता ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं। और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में हम आपको रोज़ाना देते हैं मौसम की जानकारी। तो मौसम की जानकारी दें तो आज धर्मशाला में बाहर अच्छी धूप खिली हुई है और मौसम में गर्माहट भी है। तो श्रोताओं, धर्मशाला की ही हम बात करेंगे तो आज धर्मशाला का जो अधिकतम तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान बना हुआ है। हल्के फुल्के जो बादल हैं वो नज़र आएंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिली रहेगी। हो सकता है शाम ढलते ढलते हल्का मौसम ख़राब हो जाए। और हवा में नमी की अगर हम बात करें तो नमी 88% मौसम में बनी हुई है। और साथ ही श्रोताओं, हम आपको ये भी कहेंगे कि मौसम जो है वो दिन प्रतिदिन अपना रूप बदल रहा है। कहीं ना कहीं मानसून जो है वो दरवाज़े पे खड़ा है और दस्तक दे रहा है, कभी भी वो आ सकता है। और ऐसे में हम अपने श्रोताओं से यही आग्रह करते हैं कि जब भी मौसम बदलता है तो हमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, अपना खान पान बदलना पड़ता है, अपने पहने हुए कपड़े बदलने पड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं जिससे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। और मौसम जब बदलता है तो उसका कोई भी बुरा परिणाम हमें ना देखने को मिले। तो आपसे यही कहेंगे, मौसम के हिसाब से अपने हर कार्यक्रम को बनाइए। कहीं भी जाना है तो मौसम को पहले नज़र में रखिए, उसके बाद कहीं जाने का प्लान आप बनाइए और साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। तो श्रोताओं, मौसम की जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी है और अब कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम का अगला गीत आपके समक्ष रखेंगे, आपके रेडियो सेट तक पहुंचाएंगे। तो लीजिए, सुनिए इस प्यारे से गीत को आप सभी अपने अपने रेडियो सेट पर।

आपसे बातचीत करते हैं। श्रोताओं, सुबह का समय रहता है और हम सभी अपने अपने घर के बहुत सारे काम जो है वो करते हैं और साफ़ सफाई का काम जो है वो बहुत खास रहता है और साफ़ सफाई के साथ साथ पर्यावरण को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। पर्यावरण पर भी आज कार्यक्रम में ज़रूर आपसे बात करेंगे, लेकिन चलते हैं फिर से सुनते हैं उसी गीत को जो अभी आपको सुनवाने वाले थे।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोता हूँ, आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये गीत, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल, ज़िंदगी का सफ़र भी श्रोता हूँ ऐसा ही है, हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, चाहे कैसा भी समय क्यों ना आ जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, जो बढ़ता है चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। और अगर हम बैठ गए तो हम ना तो मंजिल पर पहुंच पाएंगे और ना ही ज़िंदगी में कभी कभी कामयाब हो पाएंगे। इसलिए ज़िंदगी हमें बहुत सारे सबक सिखाती है, बहुत कुछ हमें सीखने को ज़िंदगी में मिलता है, उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और उन्हीं उतार चढ़ाव से हमें निकल कर आगे बढ़ना है, मंजिल तक पहुँचना है। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी इस समय सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। कार्यक्रम का समय एक बार फिर से बता दें, प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय इस कार्यक्रम का रहता है और इन 2 घंटों में हम आपके साथ करते हैं बातचीत, साथ ही आप तक पहुँचाते हैं बहुत ही ज़रूरी जानकारियाँ और बहुत सारी ऐसी बातें हम करते हैं जिससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ समझने को मिलता है और साथ ही आपके मनोरंजन का भी ख्याल रखा जाता है। उसके लिए हम लेकर आते हैं बहुत प्यारे प्यारे गीत। तो कार्यक्रम में अब समय जो है श्रोताओं वो हो रहा है समाचारों का, तो पहले सुनेंगे समाचार और बाकी की बातचीत हम करेंगे समाचारों के बाद।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बड़ा बंगाल के दौरे पर, 14 वर्षीय बिहार को मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में हिमाचल अन्य राज्यों में, केंद्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट में सराहा गया प्रदेश का सड़क निर्माण। सरकारी भर्तियों में चिप्टा टेस्ट जल्द बनाए जाएंगे। आज नव निर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक होगी आयोजित, क्षेत्र में प्रस्तावों पर होगी चर्चा। और पंचायती राज व नगर निकाय संस्थाओं में भाजपा का सरकार पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप, आज सभी जिलों में करेंगे धरना प्रदर्शन। अब समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कांगड़ा जिले के दुर्गम क्षेत्र बड़ा बंगाल के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां हाल ही में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे तथा स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। अपर बड़ा बंगाल गांव में स्थित माइक्रो हाइड्रो के निरीक्षण के पश्चात मुख्यमंत्री यहाँ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री का आज बड़ा बंगाल में ही रुकने का कार्यक्रम है, वे कल बड़ा बंगाल से शिमला लौटेंगे। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 14 वर्षों में किसी भी मुख्यमंत्री ने इस दुर्गम क्षेत्र का दौरा नहीं किया है। उन्होंने बताया कि दौरे का मुख्य उद्देश्य इस दुर्गम क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को करीब से समझना और सरकार इस क्षेत्र में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा सके, इसलिए ये यात्रा जरूरी है। उन्होंने कहा कि बड़ा बंगाल की कठिन परिस्थितियों को मौके पर जाकर ही बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2025-26 की गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट से जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद विकास और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि राज्य में निरीक्षण की गई 1029 सड़क परियोजनाओं में से मात्र 3.8% कार्य ही कम गुणवत्ता के पाए गए, जो अन्य पहाड़ी राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण, कड़ी जवाबदेही और उच्च गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के कारण ये सफलता मिली है। प्रदेश में भविष्य में होने वाली सरकारी भर्तियों के लिए एंटी चिट्टर टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा, जिसके लिए तकनीकी पैरामीटर बनाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर यह जानकारी देते हुए प्रदेश के कार्यकारी मुख्य सचिव के पंत ने बताया कि सरकार चिट्टे के खात्मे के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है और तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने की प्रक्रिया जारी है। इस अभियान में उपायुक्तों सहित अधिकारियों का भी एंटी चिट्टर टेस्ट के आधार पर आकलन करने का निर्णय लिया गया है।
2: चीजें की जा रही हैं। एक जो भी भर्ती होगी सरकार में, जो भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा उसमें एंटी चिट्टा टेस्ट कंपलसरी किया जा रहा है। उसके लिए टेक्निकल पैरामीटर्स जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो उस पर काम कर रहा है और उसको बना रहे हैं, और जैसे ही टेक्निकल पैरामीटर्स बन जाते हैं उसको हम नोटिफाई कर देंगे। दूसरा यह भी निर्णय लिया गया है कि चिट्टा और जो भी सरकार की कुछ मेन प्रायोरिटी है उनमें सभी डीसीज और बाकी अधिकारियों को भी उस पर इवेल्युएट किया जाएगा, और उस इवेल्युएशन के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस को भी उस हिसाब से जज किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस को उस तरह से नंबर दिए जाएंगे।
1: आम लोगों तक सरल और सुलभ न्याय पहुंचाने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किए गए समाधान समारोह विशेष लोक अदालत के तहत लंबित मामलों को आपसी सहमति से निपटाया जा रहा है। 21 अप्रैल से जारी इस महाअभियान के तहत वर्तमान में राज्य, जिला व उच्च न्यायालयों में विधिक सेवा प्राधिकरणों और मध्यस्थता केंद्रों में सुलह बैठकें आयोजित की जा रही है। इस महत्वपूर्ण पहल का मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों का सुलह व के जरिए त्वरित समाधान करना है, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन लिए जा रहे हैं। इस महाअभियान का समापन 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट परिसर में विशेष लोक अदालत के साथ होगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNewsShimla और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज नव निर्वाचित 3,758 पंचायतों की पहली बैठक आयोजित होगी, जिसमें प्रधान और उप प्रधान सभी वार्ड सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंचायती राज विभाग द्वारा जारी एजेंडों के अनुसार आज पंचायतें अपने अपने क्षेत्र में सड़क संपर्क, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल व सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के साथ आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रस्ताव भी तैयार करेंगे। मानसून को देखते हुए भूस्खलन, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक तैयारियों पर भी चर्चा होगी। प्रदेश भाजपा ने पंचायती राज व नगर निकाय संस्थाओं में कांग्रेस सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि जिला परिषद, BDC तथा नगर परिषदों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव काफी पहले सम्पन्न हो जाने चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार जानबूझकर इन चुनावों की तिथियां घोषित नहीं कर रही है। उनका आरोप है कि सरकार इस देरी का उपयोग हॉर्स ट्रेडिंग और निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रभावित करने के लिए करना चाहती है। भाजपा इस पूरे घटनाक्रम पर आज प्रशासन से तत्काल अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथियां घोषित करने की मांग को लेकर सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदेश भर में कल रविवार 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। इस अभियान में 5 वर्ष तक की आयु के 5,94,000 से अधिक बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य है। इस अभियान के लिए प्रदेश में 4,753 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। चंबा जिला से संबंध रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय धाविका सीमा ने एक बार फिर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इन दिनों भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में चल रही 65वीं राष्ट्रीय सीनियर प्रतियोगिता में सीमा ने 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। कल 28 जून को इस प्रतियोगिता में सीमा 10000 मीटर की दौड़ में भी भाग लेगी। सीमा के बेहतर प्रदर्शन से उनका जापान में होने वाली एशियन गेम्स के लिए चयन हो गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में कल दोपहर बाद प्री मानसून का असर देखने को मिला। शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हुई, जबकि मैदानी क्षेत्रों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना में उमस भरी गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ी है। आज प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में हल्के बादल छाए हैं और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। इस दौरान ऊंची चोटियों में बर्फबारी की भी संभावना है। विभाग के अनुसार मॉनसून 5 दिनों की देरी से चल रहा है और जुलाई माह की शुरुआत में प्रदेश में दस्तक दे सकता है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द है, रामपुर में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी पिकअप, मां बेटे समेत 6 की मौत। पंजाब केसरी के शब्द है, फेसबुक पर लाइव थी महिला, चालक ने नियंत्रण खोया और पिकअप खाई में गिरी, 6 की मौत। शिक्षकों को 2028 तक पास करना होगा टेट, नहीं तो जाएगी नौकरी, शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग सख्त, दिव्य हिमाचल के शब्द है, हिमाचल में भी 2028 से पहले पास करना होगा टेट। हिमाचल दस्तक के अनुसार सीएम ने चंडीगढ़ में मांगी हिमाचल के हक की 7.19% हिस्सेदारी, चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह। मौसम से जुड़ी खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, 4 जिलों में प्री मानसून की झमाझम बारिश, मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बरकरार। अंत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से वर्षों के बाद कोई मुख्यमंत्री पहुंचेंगे दुर्गम क्षेत्र। रामनगर ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में हिमाचल पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर, केंद्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट में सराहा गया प्रदेश का सड़क निर्माण। सरकारी भर्तियों में और पंचायती राज और नगर निकाय का

नमस्कार दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के चमकते सितारों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं आपके अपने शहर कांगड़ा में। तो याद रखिएगा, 28 जून 2026 रविवार को सुबह ठीक 9 बजे से जीएबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा में ये भव्य शाइनिंग स्टार फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7710 77122 या फिर 7888819356। धन्यवाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। समाचारों के बाद और इस अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। जितने भी श्रोता हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उन सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में, और एक बार फिर से सुषमा की प्यार भरी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, गीत से पहले, कि पर्यावरण पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई पर बात करना भी ज़रूरी है। सुबह का समय होता है श्रोताओं, और आजकल हर किसी के घर द्वार तक सुबह सुबह हमारा कूड़ा कचरा लेने के लिए कोई ना कोई भाई या बहन हमारे आते हैं और हमें आवाज़ लगाते हैं या सीटी मारकर हमें बोलते हैं कि अपने घर का कचरा दे दीजिए। और ऐसे में बहुत बार देखा गया है कि वो लोगों को कहते हैं कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग रखा कीजिए। बहुत से लोग जागरूक हो चुके हैं श्रोताओं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम ये एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं, गीला और सूखा कूड़ा मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं। तो श्रोताओं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन हाँ, अभी भी हमारे दिमाग में ये बात रहती है कि गीला और सूखा कूड़ा अलग क्यों रखना है। कई लोगों का मानना है कि कूड़ा तो कूड़ा है, लेकिन श्रोताओं, गीले कूड़े में वो सब सामान आता है जो आपके रसोई घर से निकलता है, जैसे कि फल सब्जियों की आपके जो छिलके रहते हैं, या जब भी आप सब्जी वगैरह काटते हैं उसकी वेस्ट रहती है, या फिर आपके जो वॉशरूम में आपका डस्टबिन रहता है उसका कूड़ा आप गीले में डालेंगे। तो अगर आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, छोटी मोटी बागवानी करते हैं, तो आप घर में जो किचन से आपका वेस्ट निकलता है, जिसमें कि चाय पत्ती हमारी कई बार निकलती है, चाय बनाने के बाद हम उस चाय पत्ती को डस्टबिन में डाल देते हैं, तो एक आप बॉक्स रख सकते हैं, डिब्बा रख सकते हैं, उसमें आप कटी जो साग सब्जी की आपकी जो वेस्ट है वो डाल सकते हैं, चाय पत्ती डाल सकते हैं, और इनका इस्तेमाल आप अच्छी खाद बनाने में कर सकते हैं। श्रोताओं, ऐसा करके देखिए, आपको बहुत अच्छी खाद मिलेगी। और गीले कूड़े की बात करें तो सूखा कूड़ा जो है, कागज़, प्लास्टिक, कांच और धातु जैसी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं, और श्रोताओं, रिसाइकल करके हम इस कूड़े का दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम ये दोनों चीज़ें, गीला और सूखा कूड़ा, इकट्ठा कर देंगे तो ना तो वो हमारे किसी काम आएगा, ना हम उसकी खाद ही बना सकते हैं, और ना ही रिसाइकलिंग उसकी ढंग से हो पाएगी। तो श्रोताओं, जो भी हमें निर्देश दिए जाते हैं या कहा जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई हमारा फ़ायदा रहता है, तो उन्हें मानना चाहिए, और हमें अपना कूड़ा गीला अलग और सूखा अलग रख कर उन्हें देना चाहिए। तो आइए आज से ये छोटी सी एक आदत जो है वो अपनाते हैं, और गीला और सूखा कूड़ा हमेशा अलग रखते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण हमारा है और इसे हम ही को साफ सुथरा रखना है। तो इन बातों को अब यहीं पर देंगे विराम, और आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम में एक और प्यारे से गीत की ओर। नरसिम्हा फिल्म से गीत लेकर आए हैं श्रोताओं, और इस गीत में आवाज़ें रहेंगी अलका याग्निक और उदित नारायण की।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, बहुत सारी गलतियां बहुत हसीन होती हैं और हमें कर भी लेनी चाहिए, जैसा कि इस गीत में कहा गया कि हमसे तुम दोस्ती कर लो। बिल्कुल, और आपकी हमारी दोस्ती भी इसी तरह से बरकरार रहे, हम ऐसी कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं। तो श्रोताओं, आपका प्यार और आपका अपनापन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अब हम आगे बढ़ेंगे श्रोताओं, और आज है 27 जून का दिन। देखिए, दिन, महीने, साल ऐसे ही निकलते चले जाते हैं और जून महीना जो है वो भी अपने आखिरी पड़ाव पर है। बस कुछ ही दिनों का मेहमान है जून का ये महीना, फिर जुलाई का महीना आने वाला है श्रोताओं। तो 27 जून की आज हम बात करेंगे, और हर दिन का इतिहास कुछ ना कुछ रहता है, आज के दिन का क्या इतिहास रहा होगा उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे उन घटनाओं को जिसके लिए 27 जून इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। श्रोताओं, चलते हैं 1857 की ओर। आज ही के दिन भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वीर लोचन निषाद और समाधान निषाद समेत 167 क्रांतिकारियों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। श्रोताओं, आज ही के दिन 1964 में दिल्ली के तीन मूर्ति भवन को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया गया था। 1967 की बात करें तो आज ही के दिन लंदन के वॉकलीज बैंक में दुनिया का पहला एटीएम स्थापित किया गया। 1991 की बात करें तो 10 दिवसीय युद्ध की शुरुआत करते हुए यूगोस्लाविया की सेना ने स्लोवेनिया में आक्रमण आज ही के दिन किया था। साथ ही श्रोताओं, आज ही के दिन 1997 की बात अगर हम करें तो ताजिकिस्तान में 5 साल तक चले गृह युद्ध की समाप्ति हुई और आज ही के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया गया। साथ ही श्रोताओं, हर वर्ष 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSME दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल श्रोताओं, इस पर थोड़ी सी बातचीत हम आपके साथ कार्यक्रम में ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए यहीं रुकते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एक और खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे हम लेकर आए हैं फूल और अंगार फिल्म से। आवाज़ें हैं कुमार शानू और साधना सरगम की।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। अभी आप सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। साथ ही श्रोताओं आपको बता दें 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हमीरपुर के ढटवाल की आवाज़ पर भी आप हम सभी को सुन सकते हैं और इस समय सुन भी रहे हैं। हमीरपुर के जितने भी श्रोता कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं उन्हें भी एक बार फिर से सुषमा की प्यार भरी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी ठीक ठाक होंगे और कार्यक्रम के साथ जुड़े होंगे। तो श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का ही नहीं होता है, बहुत सारी जानकारियाँ भी आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचाई जाती हैं। बिल्कुल श्रोताओं, और आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि अब हम बढ़ेंगे जानकारी की और। तो श्रोताओं जानकारी आपके साथ करते हैं साझा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे पर लगाम लगाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में ड्रग तस्करों या नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की विश्वसनीय सूचना देने वाले व्यक्तियों को 10 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। श्रोता, इसका उद्देश्य समाज को नशा मुक्त बनाने के अभियान में जन सहभागिता को बढ़ावा देना है। साथ ही श्रोताओं आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निवारण दिवस के अवसर पर शुक्रवार यानी कि पिछले दिन रिज पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्य अतिथि ने उपस्थित जन समूह को नशा निषेध की शपथ दिलाई और समाज को नशे के दुष्प्रभावों से मुक्त बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। इसके बाद उन्होंने जन जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित वॉकथॉन एवं साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो श्रोताओं बिल्कुल बहुत अच्छी पहल जो है ये सरकार की द्वारा की जा रही है। 10 लाख रुपए का इनाम आपको दिया जाएगा अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति की सूचना देते हैं जो नशा तस्करी करता है। साथ ही श्रोताओं बातों बातों में हम एक बात और कहेंगे, आजकल की युवा पीढ़ी जो हमारे बच्चे हैं वो कभी भी डगमगा सकते हैं। तो ऐसे में एज अ पेरेंट्स हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों पर हम नज़र रखें, बच्चे कब कहाँ जाते हैं क्या करते हैं। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो बच्चों के साथ बैठकर ज़रूर बातचीत कीजिए और बच्चों के साथ एक अच्छा दोस्त बनकर अगर आप बात करेंगे तो आपकी अपनी हर बात आपके साथ ज़रूर वो शेयर करते हैं। तो श्रोताओं अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चों को भी ख्याल रखिए, उन पर भी नज़र ज़रूर रखिए। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अब जानकारी के बाद आगे बढ़ेंगे हम और आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत, तड़ीपार फिल्म का ये गीत अब आप सभी सुनेंगे आपके अपने रेडियो सेट पर कुमार शानू की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला भी आप सुन रहे हैं और आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम बात करेंगे, जैसे कि हमने बात की थी, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSME दिवस मनाया जाता है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की बात हम कर रहे हैं। ये छोटे छोटे उद्योग ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, चाहे हस्तशिल्प हो, बुनाई हो, खाद्य प्रसंस्करण हो, या मशरूम उत्पादन हो, डेयरी से जुड़ा काम हो, मधुमक्खी पालन हो, या छोटे निर्माण उद्योग, ये सभी MSME का हिस्सा हो सकते हैं। इनसे लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है और स्थानीय प्रतिभा को आगे बढ़ाने में अवसर मिलता है। यदि आपके पास भी कोई अच्छा विचार है श्रोताओं, तो छोटे स्तर से शुरुआत करके आप ही एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। और आज सरकार भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऐसे उद्यमों को बढ़ावा दे रही है। इसलिए श्रोताओं, हमें याद रखना चाहिए, बड़े सपनों की शुरुआत अक्सर छोटे कदमों से होती है। इसलिए आत्मनिर्भर बनिए और दूसरों के लिए भी रोज़गार के अवसर पैदा करिए। बिल्कुल श्रोताओं, और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आप जुड़े हुए हैं और समय जो है वो एक छोटे से अंतराल का है। लेंगे एक छोटा सा अंतराल, फिर से जुड़ेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

नमस्कार दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के चमकते सितारों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं आपके अपने शहर कांगड़ा में। तो याद रखिएगा, 28 जून 2026 रविवार को सुबह ठीक 9 बजे से जीएबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा में ये भव्य शाइनिंग स्टार फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7710 77122 या फिर 7888819356। धन्यवाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इक्यानवे दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आपके साथ बातचीत करते हैं, मनोरंजन आपका करवाते हैं प्यारे प्यारे गीतों के साथ और साथ ही जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाते हैं। तो श्रोताओं, आज थोड़ी सी बात हम करेंगे जिंदगी की पुरानी यादों के पिटारे के बारे में। बिल्कुल श्रोताओं, कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भाग दौड़ में पता ही नहीं चलता कि हम कहां से कहां पहुंच गए और बिल्कुल भी रेस्ट का टाइम नहीं मिलता, सोच विचार का टाइम नहीं मिलता। और ऐसे में कभी अगर हमें समय मिले तो ज़रूर हमें अपनी पुरानी यादों का पिटारा, पुरानी यादों की एल्बम जो है वो खोल लेनी चाहिए। बहुत सारी यादें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करके सोच के हमें खुशी मिलती है। श्रोताओं, पुरानी यादों का पिटारा खोलने से हमें अपने बचपन की मासूमियत, दोस्तों की हंसी, परिवार के साथ बिताए अनमोल पल और जीवन के वो खूबसूरत दिन याद आते हैं जिन्होंने हमें आज का इंसान बनाया है। बिल्कुल श्रोताओं, और यादें हमें सिर्फ भावुक नहीं करती बल्कि ये हमें याद दिलाती हैं कि हमने किस तरह से कौन सी कठिनाइयों को पार करके अपनी मंजिल को पाया है, ये कौन सी खुशियाँ थी जिन्हें हमने जिया है और कौन से वो पल थे जिन्हें याद करके आज भी हम कभी कभी अपनी आंखें नम कर लेते हैं। इसलिए कभी कभी अपनी पुरानी एल्बम खोल लेनी चाहिए, पुराने दोस्तों को याद कर लेना चाहिए, बचपन की यादें ताज़ी कर लेनी चाहिए। श्रोताओं, एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि आजकल खीरों का समय चला है, खीरे आपके मार्केट में बहुत सारे मिल रहे हैं और हम लोग खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो श्रोताओं, स्कूल के समय की बात है और हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। पेरेंट्स हमें सिर्फ उस समय में एक रुपया या दो रुपया हमें देते थे कि जाकर स्कूल में कुछ खा लेना। और बच्चों में ये होता है ना कि हम लोग आज हाफ़ डे में, मतलब जब छुट्टी हो जाएगी, आधी छुट्टी होती थी तो कुछ ना कुछ खा पी लेते थे और मस्त मज़ाक कर लेते थे। और उस समय में हमारे पास एक रुपया होता था तो हम सोचते थे हम बहुत बड़े रईस हैं, है ना, और हमारे लिए वो एक रुपया मतलब 100 रुपये के बराबर होता था। और उस समय, आजकल तो खैर बहुत कुछ बिकता है बाज़ार में खाने के लिए, बहुत कुछ बच्चे खाते हैं, लेकिन उस समय एक खीरे वाले अंकल भी आते थे जो देसी खीरे लेके आते थे और उनको काट के लंबी लंबी स्लाइस बनाते थे और उस पर नमक मिर्च लगा कर वो देते थे। तो हम एक रुपये में अगर सब देखा जाए, याद तो अभी मुझे नहीं है, लेकिन शायद एक रुपये में एक या दो खीरे देते थे। और हम लोग अपना जो दिन का जो लंच बॉक्स होता था वो फिनिश करके वो खीरा खाते थे और बड़ा ही मज़ा आता था उस समय। श्रोताओं, सच में वो दिन कैसे भी थे लेकिन कहीं ना कहीं हमें याद आ ही जाते हैं। अपना समय कोई भी नहीं भूलता और भूलना भी नहीं चाहिए। आज हमारे पास जैसा भी समय हो, अच्छा बुरा, लेकिन जो पुराना समय गया है वो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा कर गया है और हमने उस समय को बहुत अच्छे से जिया है और आज भी वो दिन, वो समय हमें याद है। इसलिए अपनी पुरानी बातों को याद करना चाहिए और अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि शेयर करके हमें भी खुशी मिलती है और कहीं ना कहीं हम अपना बचपन फिर से जी लेते हैं। तो आपको भी अगर श्रोताओं कोई बचपन की याद आ रही हो, कोई बात याद आ रही हो, तो आप भी अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। फेसबुक लाइव पेज पर आप अपनी कोई एक छोटी सी कहानी, कोई छोटी सी बात जो है वो हमें लिख कर भेज सकते हैं कि कौन सी बात ऐसी थी जो बचपन की आपको आज याद आ गई। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सुन रहे हैं और अपनी बातों को अब फिर से हम यहीं पर रोकेंगे क्योंकि समय है आपको गीत सुनवाने का। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिगर फिल्म का गीत आप तक पहुंचाते हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं और आप कहेंगे कि आज क्या हो रहा है क्या हो रहा है। श्रोताओं, आज हमारा जो कंप्यूटर है वो थोड़ा सा हैंग हो रहा है और जो गीत आपको सुनवाना है वो ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन तब तक हम कर लेते हैं बातचीत। और जैसे कि हम पुरानी बातों को याद कर रहे थे, पुरानी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें याद आती हैं और हम ज़रूर किसी न किसी के साथ साझा करते हैं। श्रोताओं, ऐसे ही बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम याद तो करते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की जो ये लाइफ दौड़ भाग वाली है उसमें कहीं हम समय नहीं दे पाते उनसे बात करने का। तो अगर हमें ऐसे दोस्त याद आते हैं जिन्हें बहुत अरसे से हमने फ़ोन नहीं किया है या बात नहीं की है, अगर आपके पास उनका नंबर हो तो ज़रूर आप उन्हें फ़ोन कर सकते हैं। आपको भी अच्छा लगेगा और आपके दोस्तों को भी अच्छा लगेगा आपसे बात करके। और अगर बात नहीं कर हो सकती है तो फेसबुक पेज पर तो आप लोग उनसे बात कर ही सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी भी तरह से दोस्तों के साथ जुड़िए, बात कीजिए। तो श्रोताओं, गीत हमारा बिल्कुल रेडी है आप तक पहुंचने के लिए, तो लीजिए सुनिए इस प्यारे से गीत को।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। कार्यक्रम में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और श्रोताओं गीत के बाद फिर से हम चलते हैं आपके साथ, करते हैं कुछ बातचीत। श्रोताओं फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म ले लीजिए आप, वहाँ जब भी आप जाते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई खबर या कोई ना कोई बात आपको रोक लेती है, यानी कि मजबूर कर देती है उस बात को सुनने के लिए। और ऐसी ही एक बात मैंने भी सुनी फेसबुक पर, और किसी ने अपनी कोई बात शेयर की थी। वो कहीं किसी रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे कि वो किसी रेस्टोरेंट की खबर सुन के, कोई नया रेस्टोरेंट खुला था और वहाँ जाने का मन उनका हुआ और वो गए, और वहाँ का जो एक्सपीरियंस है उन्होंने वहाँ पर साझा किया कि जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें वहाँ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई, क्योंकि वहाँ का स्टाफ थोड़ा सा रूड था, किसी ने स्माइल करके उनका वेलकम नहीं किया, किसी के फेस पर ऐसा कुछ पॉजिटिव नहीं दिखा। मतलब कि चाहे जितना भी अच्छा उन्होंने इंटीरियर करा हो, कितना ही बड़ा रेस्टोरेंट उन्होंने बनाया हो, लेकिन जब वहाँ बैठकर हमें अच्छी फीलिंग नहीं आती है तो हमारा मन दोबारा वहाँ आने का बिल्कुल भी नहीं करता है। और बिल्कुल उनकी उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये तो रेस्टोरेंट की बात है श्रोताओं, अगर छोटी सी एक दुकान की ही बात करें तो जब हम वहाँ कुछ ना कुछ लेने जाते हैं और दुकानदार अगर हमें कहीं कुछ ऐसा कह देता है कि रूड वे में अगर हमें जवाब दे देता है, तो हम वहीं पर सामान छोड़कर आ जाते हैं और दोबारा उस दुकान पर जाते भी नहीं हैं। श्रोताओं ये छोटा सा किस्सा मेरे साथ भी हुआ था। एक झाड़ू लेने में वहाँ गई थी, और अब हमारी आदत होती है हर चीज़ को अच्छे से देखने की, और वो झाड़ू जो था वो मुझे थोड़ा हल्का लगा, जितना कि उसका प्राइस था उस हिसाब से थोड़ा हल्का लगा। तो मैंने भी कह दिया कि अंकल आपने पैसे जो हैं थोड़े से ज़्यादा लगा रखे हैं, झाड़ू इतना अच्छा नहीं है। तो उनका आगे से

जो आंसर था वो बहुत रूड था कि झाड़ू रख दीजिए और आप जा सकते हैं। तो श्रोताओं, उस टाइम तो मैं आ गई, लेकिन उसके बाद आज तक उस दुकान में दोबारा गई नहीं। कहने का भाव यही है श्रोताओं कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो बात करने का ढंग है, वही हमें लोगों को खींचता है हमारी ओर। और अगर हम हल्की सी स्माइल के साथ किसी से बात करेंगे, किसी से प्यार से बात करेंगे, तो वो इंसान बार बार हमारे तक पहुंचेगा। बिल्कुल। और उनकी बात जो थी मुझे अच्छी लगी कि खाना वगैरह जो भी था वो ठीक होगा, लेकिन जब आपको कोई स्माइल से आंसर नहीं करेगा या वहाँ बैठकर आपको अच्छी वाइब्स नहीं आएंगी तो आप वहाँ नहीं जाएंगे। कोई भी काम है श्रोताओं, चाहे हम घर की बात कर लें, अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, मेहमान आते हैं, और हम दरवाज़े पर ही उनसे थोड़ा सा रूड होकर बात कर लें, हमारे पास समय नहीं है, अभी हम बैठ नहीं सकते हैं, ये सब बातें कर दें, तो उन्हें बुरा लगेगा। और अगर हमारे पास समय नहीं है, हम कहीं जा रहे हैं, और उस बात को हम किसी और वे में कहें कि आइए 5 मिनट बैठिए, लेकिन हमें कहीं जाना था, पर फिर भी कोई बात नहीं, आप आए हैं तो ज़रूर बैठिए, एक कप चाय का पी के जाइए, ऐसा अगर हम कहेंगे तो वो इंसान दोबारा आएगा, सोचेगा, नहीं तो जाकर वो हमारी बुराई ही करेगा। श्रोताओं, हमारे जो बिहेवियर है, हमारा जो व्यवहार है, वही लोगों को हमारी ओर खींचता है या दूर लेकर चला जाता है। कुछ भी नहीं जाता, एक छोटी सी स्माइल के साथ अगर आप बात करेंगे तो मानिए कि रिश्ते आपके और बहुत अच्छे बनते चले जाएंगे। छोटी सी बात थी श्रोताओं जो आपके साथ हमने की साझा। ये प्लेटफॉर्म ऐसा ही है श्रोताओं, जहाँ हम आपके साथ हर बात कर सकते हैं, और इन बातों से कहीं ना कहीं हमें भी सीख मिलती है कि हमें अपना बिहेवियर, अपना व्यवहार किस तरह से रखना है। तो बातों को यहीं पर फिर से रोकते हैं और ले चलते हैं कार्यक्रम में आपको आगे शोला और शबनम फिल्म के इस प्यारे से गीत की ओर। और श्रोताओं, इस गीत में आवाज़ें रहेंगी शब्बीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हम कार्यक्रम में जुड़ेंगे। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

नमस्कार दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के चमकते सितारों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं आपके अपने शहर कांगड़ा में। तो याद रखिएगा, 28 जून 2026 रविवार को सुबह ठीक 9 बजे से जीएबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा में ये भव्य शाइनिंग स्टार फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7710 7712 या फिर 7888 8819356। धन्यवाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, इस अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। आप सभी बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे और बातचीत करेंगे, लेकिन पहले सुनेंगे एक प्यारा सा गीत। चलिए श्रोताओं, सुनते हैं मैदानी जंग फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं इसमें कुमार शानू और सपना मुखर्जी की।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। और आज का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सभी आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, इस गीत के बाद आगे बढ़ते हैं और फिर से लिए चलते हैं आपको जानकारी की। और हिमाचल प्रदेश की सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील के दौरान जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं चलेगा। मिड डे मील योजना की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था भी मजबूत कर दी गई है। श्रोताओं, शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में टोल फ्री हेल्पलाइन 1800 180 8007 नंबर, एक बार फिर से आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, 1800 180 8007 प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस नंबर पर छात्र, अभिभावक या आम नागरिक मिड डे मील की गुणवत्ता, वितरण में गड़बड़ी या भेदभाव से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। श्रोताओं, हेल्पलाइन प्रत्येक कार्य दिवस सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगी। बिल्कुल श्रोताओं, और आप सभी इस नंबर का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको कहीं ऐसा लगता है तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको नंबर हम नोट करवा देते हैं, 1800 180 8007। और ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने। और इस जानकारी के बाद एक बार फिर से हम आगे बढ़ेंगे और आपको सुनवाएंगे हत्या फिल्म का गीत। आवाज़ें रहेंगी इस गीत में मोहम्मद अजीज़ और सपना मुखर्जी की।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोता, इस गीत के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ी सी बातचीत करेंगे स्वास्थ्य को लेकर। श्रोता, स्वास्थ्य का ख्याल हमें रखना चाहिए और आजकल कहते हैं ना कि मार्केट में हर फल जो है हमें उपलब्ध हो जाता है और आज ख़ास हम बात करेंगे लीची की, क्योंकि लीची का जो फल है वो अब मार्केट में दिखने लग पड़ा है। गर्मियों में सारे फलों का स्वाद चखने को तो मिलता ही है, तरबूज से लेकर खरबूजे तक इस मौसम में ऐसे कई फल मिलते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ हमें हाइड्रेट भी रखते हैं। लीची भी इनमें से एक है जो कि इस सीज़न में कई लोगों को पसंदीदा फल होता है। लोग बड़ी ही बेसब्री से इसका इंतज़ार करते हैं। श्रोताओं, स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये ढेर सारे स्वास्थ्य लाभों से भरपूर होती है। विटामिन सी की बात कर लीजिए, पोटाशियम और नेचुरल शुगर का एक अच्छा सोर्स होती है लीची। इसका सेवन शरीर में पानी के अनुपात को संतुलित रखता है। साथ ही श्रोताओं, शरीर में और पेट को ठंडक इससे मिलती है। पाचन क्रिया सही रखने के साथ साथ मस्तिष्क के विकास में भी इसकी बड़ी भूमिका है। लीची के पेड़ की छाल, बीज, पत्तों से लेकर फल की बहुत सारे अनगिनत गुण होते हैं। तो श्रोताओं, लीची मार्केट में आ चुकी है, आप इसका सेवन कर सकते हैं। बच्चों को भी आप स्कूल में उनके फ्रूट बॉक्स में डालकर इसे दे सकते हैं। श्रोताओं, लीची में मौजूद विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और पाचन प्रक्रिया के लिए ज़रूरी है। इससे बीटा कैरोटीन को लीवर और दूसरे अंगों में संग्रहित करने में मदद मिलती है। फोलेट हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखता है। साथ ही लीची एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसमें मौजूद विटामिन सी हमारे शरीर में रक्त कोशिकाओं के निर्माण और लोहे की अवशोषण में भी मदद करता है, जो कि रोग प्रतिरोधक प्रणाली को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कार्यक्रम में हम यही कहेंगे कि जल्दी से मार्केट जाइए और लीची लेकर आइए। अगर लीची लेकर आ गए हैं तो ज़रूर उसका सेवन कीजिए। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे और फिर से आपको लिए चलेंगे प्यारे से गीत की ओर, जीने की राह। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, गीत सभी प्यारे होते हैं, अच्छे होते हैं, बस ये है कि पसंद अपनी अपनी होती है। और श्रोताओं, सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए हम गीत लेकर आते हैं, नए पुराने, और उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आते होंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का समय भी अब समाप्ति की ओर है, और चलते चलते अब एक गज़ल भी आपको सुनवाएंगे। एक बार मिलो हमसे, इस फिल्म से ये ली गई है और सलमा आगा की आवाज़ है।

मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना कि जहाँ आज हम मिले हैं वो जगह याद रखना। बिल्कुल, हम भी आपसे इसी जगह मिलते हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। आप भी याद रखिएगा और ज़रूर यहाँ आते रहिए, मिलते रहिए हमसे, और हम आपसे मिलने आएंगे फिर इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम पर। श्रोताओं, और आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्ति की ओर है। चलते चलते आपको सुनवा कर जाएंगे आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत, जिसे हमने लिया है भूत बंगला फिल्म से। विशाल मिश्रा, नकाश अजीत और अंतरा मित्रा की आवाज़ों में इस गीत को लीजिए, सुनिए, और इस गीत के साथ ही अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को दीजिए आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाज़त।

नमस्कार दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के चमकते सितारों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं आपके अपने शहर कांगड़ा में। तो याद रखिएगा, 28 जून 2026 रविवार को सुबह ठीक 9 बजे से जीएबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा में ये भव्य शाइनिंग स्टार फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7710 7712 या फिर 7888891936। धन्यवाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों, सिंधियों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं।
2: वाह, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं, कुछ नहीं। पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात। तो बात तय हुई, गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो
0: देना।
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो, ये भी अच्छा है।

सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल कल कल

0: दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
1: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
2: क्यों
1: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
3: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
4: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
5: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।

0: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
1: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देकर रिजाइन कर
2: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था।

मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने में कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

नमस्कार दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के चमकते सितारों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं आपके अपने शहर कांगड़ा में। तो याद रखिएगा, 28 जून 2026 रविवार को सुबह ठीक 9 बजे से जीएबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा में ये भव्य शाइनिंग स्टार फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7710 7712 या फिर 7888891935। धन्यवाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आ गए? बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों, सब्जियों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं।
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं, कुछ नहीं। पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई, गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
3: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो, ये भी अच्छा है।
4: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
5: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
6: क्यों
5: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
7: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
8: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
9: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
10: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
7: मेरा
11: कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
7: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
12: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
13: मोहित, मेरा इस्तीफा।
14: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
13: सॉरी यार,
14: काम कीजिए आप लोग।
12: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला।

0: और एपिसोड लेकर।
1: जी दोस्तों, हर हफ्ते आप सभी कार्यक्रम सुनते हैं मन संवाद, एक प्रयास मन मन मन।

0: का और
1: प्रेयसी के साथ।
0: जी, तो आप सभी को हम दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार नमस्कार नमस्कार नमस्कार।

तरह से होता है, क्या क्या चीजें सामने आती हैं और आज के कार्यक्रम में ऐसी कौन सी खास बातचीत इससे जुड़ी रहने वाली है, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रोजिगा के साथ। आते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। और कार्यक्रम मन संवाद आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी, तो आइए आज के इस कार्यक्रम को और भी खास बनाते हैं, अपनी बातचीत को और भी खास बनाते हैं, क्योंकि जानकारियां हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो मैम, मैंने शुरुआत में ही बात की थी कि हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग व्यवहार हमें फेस करने पड़ते हैं, हर किसी की सोच हमारे जैसे नहीं हो सकती, नजरिया एक जैसा नहीं हो सकता है। तो क्यों ना आज अपने दोस्तों के साथ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बात की जाए।
1: हाँ बिल्कुल रुचिका, हमें लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है, और इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें जिस व्यक्ति को ये है उसे खुद इंसाइट नहीं होती कि मेरे साथ कोई दिक्कत भी है या मुझे अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता भी है, जिसके कारण से वो इंसान तो जीवन को खुशी से जीता रहता है, उसे उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन उसके आसपास के जो लोग हैं वो सफर करते रहते हैं। तो हमें लगता है कि जितना लोगों को जानकारी होगी इस चीज के बारे में, लोग अपना बचाव कर पाएंगे, क्योंकि हमारा वातावरण हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर कई बार बहुत बहुत गहरा प्रभाव छोड़ के जाता है।
0: बिल्कुल, मानसिक स्वास्थ्य हमारा एक छोटी सी छोटी बात को इतनी बुरी तरह से इफेक्ट कर जाता है ना कि हम उतना सोच भी नहीं पाते। तो मैम ने बात की कि अक्सर जब हम अपने बारे में सोच नहीं पाते, और असल में हम देखते हैं मैम कि औरों के बारे में हमें थोड़ा ज्यादा नॉलेज होता है और खुद की बात करें तो हमें चीजों का पता नहीं होता है। तो सबसे पहले यही बात करते हैं कि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता क्या है, असल में इसे हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसे पहचान सकते हैं।
1: देखिए, पहली चीज तो डिसऑर्डर, कोई भी डिसऑर्डर, उसमें तीन चार पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम फिर से एक बार बताना चाहते हैं। पहला कि कोई भी थॉट, इमोशन, बिहेवियर है या एटीट्यूड है, वो हमारे जिसकी हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, जैसे कि ओवरथिंकिंग है तो उसकी एक पर्टिकुलर ही थॉट बार बार आ रही है तो उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, या जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं, इंटेंसिटी या तो बहुत ज्यादा है या जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं, और ड्यूरेशन जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है या उतनी है नहीं। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी भी डिसऑर्डर को डिसऑर्डर करार करने के लिए। उसके साथ साथ ये भी जरूरी होता है कि ये ऐसी परेशानी है जो उसमें स्ट्रेस आ रहा है, और उस स्ट्रेस के कारण से आपकी पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। याद रखे कि और है एंड नहीं, यानी कि तीनों में से अगर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ भी इम्पैक्ट हो रहा है तो वो चिंता की बात है, यानी कि वो किसी ना किसी डिसऑर्डर की तरफ आपको लेके जा रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास पहुंचें और अपनी समस्या के बारे में उनसे बात करें। अब आते हैं पर्सनैलिटी के ऊपर। तो पहले समझते हैं रुचिका कि पर्सनैलिटी ओवरऑल होती क्या है।
0: बिल्कुल,
1: डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर हम बाद में आते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: देखिए, पर्सनैलिटी जो टर्म है इसका मतलब होता है मास्क, जो पर्सोना से निकला है। तो पर्सोना जो कि एक मास्क है, ये मास्क किसके लिए है? अपने आसपास के लोगों के लिए। जब हम कमरे में अकेले होते हैं तो हमें किसी मास्क की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब हम किसी के साथ होते हैं, किसी के सामने होते हैं, तो हमें उस मास्क की जरूरत

0: होती है। यानी कि ये मास्क धीरे धीरे डेवलप होता है, जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, जिस प्रकार के हमारे आसपास के वातावरण में
1: चेंजेस
0: हमारे
1: आते
0: एक्सपीरियंसेस
1: जाते
0: होते
1: हैं
0: हैं, उसके आधार पर हमारा ये मास्क डेवलप होता चला जाता है। और एक
1: जी।
0: समय के बाद 6-7 साल की उम्र तक वो मास्क डेवलप हो जाता है, जिसको तोड़ना मुश्किल होता है। अब पर्सनैलिटी अपने आप में एक ऐसी चीज है जो बहुत मुश्किल से बदलाव जिसमें आएगा। तो जब लोगों को अवेयरनेस होती है तो वो अपनी पर्सनैलिटी पे तब भी थोड़ा काम कर सकते होते हैं। लेकिन तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वो है जहाँ पर एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी को बदल नहीं पाते, जहाँ पर वो बदलना चाहते नहीं, जहाँ उन्हें इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है, जागरूकता ही नहीं है कि उन्हें बदलने की आवश्यकता भी है।
1: जरूरत है बिल्कुल।
0: देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने आप में बदलाव तब लाना चाहेगा जब उसे खुद उस चीज़ से दिक्कत हो रही होगी। दैट्स द थिंग कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिन इंडिविजुअल्स को होता है, उन इंडिविजुअल्स को खुद की पर्सनैलिटी से कोई तकलीफ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें डिप्रेशन है तो हमारी जो थॉट्स हैं उससे हमें तकलीफ होगी,
1: होगी
0: हमें
1: बिल्कुल
0: दिक्कत होगी।
1: जी।
0: अगर हमें एनजाइटी है तो हमें उस जो एक मेंटल स्टेट है हमें उससे दिक्कत होगी। हेंस आई वुड ट्राई कि हम अपने आप में कुछ बदलाव लाएं और हम इस सफरिंग से बाहर
1: बाहर
0: निकल
1: निकल
0: सकें।
1: सकें
0: बट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ ये भाव ही नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है कि वो सही है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में एक चीज़, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये ही है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो क्या है कि वो लॉन्ग टर्म तक सेम रहते हैं, वो बदलते नहीं, चेंज पॉसिबल नहीं है, उनमें इनसाइट नहीं है। वो एक ही प्रकार के थॉट, इमोशन या बिहेवियर के पैटर्न को रिपीट करते रहते हैं बार बार, सालों साल तक। ऐसा मत सोचिएगा कि जब जब लेट से जब जब एग्जाम आता है तब तब बच्चे को स्ट्रेस हो जाता है तो ये उसका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का हिस्सा है। नहीं, ये आम बात है, ये अलग बात है। यहाँ पर स्ट्रेस ऑलरेडी प्रेजेंट है, एग्जाम के होने की वजह से स्ट्रेस है, इसलिए उसको बुखार होता है या इसलिए उसको लूज मोशन हो रहे हैं। परंतु पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जब बात करी जा रही है तो ये बहुत ही आम जीवन में जिस प्रकार के लोगों के व्यवहार होते हैं उनमें देखे जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति हो, वो आए और वो बोले कि अरे आप ये पर्टिकुलर काम जो है अपनी बेटी से करा लीजिए, और वो उस बात पर उखड़ जाए जहाँ कि उस बात पर उखड़ने की आवश्यकता थी नहीं। ऐसा व्यवहार उनका पहले था, आज है और हमेशा
1: हमेशा
0: रहेगा।
1: रहेगा
0: सिर्फ उखड़ना ही काफ़ी नहीं है, ये हम अगेन सबको बता दें, क्योंकि कोई भी डिसऑर्डर होता है उसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, उसके मल्टीपल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिनके प्रति एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। यानी कि एक ही पर्टिकुलर साइन देखकर आप ये अज्यूम ना कर लें कि उनको डिसऑर्डर है। किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे हम लोग डिसऑर्डर्स के बारे में अब बात करना शुरू कर रहे हैं, हमें लगता है ये जागरूकता और ये अवेयरनेस और एक प्रकार की जिम्मेदारी होना सभी दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी
1: जरूरी
0: है
1: है
0: कि आप इसको समझें, लेकिन आप लोगों को जज ना करें, आप लोगों को समझने का प्रयास करें उल्टा।
1: बिल्कुल सही कहा है। इस बात को भी मैं भी ये कहना चाहूं क्योंकि अक्सर हम क्या कहते हैं करते हैं असल में जिंदगी में हम दूसरों को जज करना पहले शुरू कर देते। कोई अगर बड़ी हिम्मत जुटा के अगर कोई काम करना भी चाह रहा है तो फिर उसकी हिम्मत वहीं ब्रेक हो जाती है क्योंकि उसे पहले डर हो जाता है कि लोग मुझे जज करेंगे तो वो कोई भी काम शायद अच्छे से कर भी नहीं पाते और वो अपने बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं कि मैं कुछ भी करूं जज तो लोगों ने मुझे करना ही है। तो लोगों को समझना और सबसे बड़ी बात की सुनना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। फिर
0: बिल्कुल
1: चाहे अपने मन की बात हो उसे भी तो सुनना और समझना जरूरी है क्योंकि अक्सर हम अपने मन की बातों को मन में आ तो जाते हैं लेकिन फिर वही डर कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं इसको जुबान पर लेकर भी आ गया जैसे अगर मान लो कि अगर कोई लेक्चर चल रहा है कोई मतलब कि जागरूकता की बात ही चल रही है कोई स्कूल में कंपटीशन चल रहा है कुछ भी चल रहा है तो हमें वहां भी वो एक तरह से जजमेंट वाली चीज जो है सताती है कि अगर मैं इस तरह से सबके सामने स्टेज पे जाऊंगा फर्स्ट टाइम है या जैसे भी है तो वो अगर मैं जाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। ये डांस कर रहा है ये पढ़ाई छोड़कर डांस कर रहा है ये पढ़ाई छोड़कर इस मतलब होता है ना अपनी अपने नजरिए से अपने अपने तरीके से लोगों की जो परसेप्शन होती है एक तरह से वो बनती जाती है और कहीं ना कहीं उसी तरह से फिर हम लोग अपने आप को दबा देते हैं अपने आप को शायद आगे नहीं बढ़ा पाते हैं है ना। तो इसके लिए हमें जरूरी है अपने मन को समझना क्योंकि मन चंचल होता है मन बहकता भी है, मन हमें बहुत सारी, क्योंकि हमारे सामने बहुत से ऐसी चीजें होती है, सही भी होती है गलत भी होती है, लेकिन हम खुद को समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। खैर इसके बारे में हम और भी बात करेंगे दोस्तों। हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, और हर किसी की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। मैम की अलग है, मेरी अलग है, आप लोगों की अलग है, तो और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। तो ये प्रयास ही है जो हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रयास करने से ही तो जिंदगी सफल होती है, आसान होती है। तो यही प्रयास हम भी कर रहे हैं ताकि आप अपने आप को हर दिन जागरूक कर सके, अवेयर कर सके और सतर्क कर सके। आजकल बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है क्योंकि आए दिन ऐसी ऐसी न्यूज हमारे सामने आ रही है ना कि एक तरह से शॉक लग रहा है, सुनने में भी डर लग रहा है कि ऐसे ऐसे भी हो सकता है जिन पे हम आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं वही हमें धोखा दे जाते हैं, है ना। जिंदगी से एक तरह से हमें दूर करने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं। तो किसी पे आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपने मन पे विश्वास कीजिए। फिलहाल आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये बातें तो आए दिन बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन जब तक हम अपने आप को सतर्क नहीं करेंगे तब तक ये नहीं रुक पाएंगे। तो अपने साथ साथ अपने सामने जो गलत हो रहा है उसके लिए भी आवाज उठाना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर हम दूसरों के साथ गलत होता हुआ देखकर भी अनदेखा कर देते हैं कि ये हमारे घर की बात नहीं है और अगर हम इस चक्कर में पड़ गए तो बात बहुत खिंच जाएगी।
1: अरे अपने घर के बात, अपने घर की बात के लिए भी लोग आवाज नहीं उठा पाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, आजकल ऐसा समय भी आ गया है। खैर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं मैम, तो क्यों ना अपनी बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम एक ही वे में लेते हैं या इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ये किस तरह से जो है काम करता है।
1: देखिए पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स टोटल 10 होते हैं और हर एक डिसऑर्डर का अपना एक अलग मैकेनिज्म होता है, अलग साइन सिम्टम्स होते हैं। तो ये जो 10 डिसऑर्डर्स हैं इनको प्रोफेशनल्स ने 3 डिफरेंट क्लस्टर्स में बांटा हुआ है। क्लस्टर ए जिसमें 3 डिसऑर्डर्स हैं, क्लस्टर बी जिसमें 4 डिसऑर्डर्स हैं एंड क्लस्टर सी जिसमें अगेन 3 डिसऑर्डर्स। तो इस प्रकार से हम लोग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को समझते हैं।
0: मैम तो सबसे पहले ये बताइए कि इसको क्लस्टर्स में डिवाइड क्यों किया गया है और जो आपने 3 क्लस्टर्स बताए तो इनमें एक एक करके बताइए कि एक एक में क्या क्या किस तरह से ये काम करता है।
1: बिल्कुल, देखिए जब इनको समझा गया और इनको एक डिसऑर्डर का नाम दिया गया तब ये देखा गया कि एक डिसऑर्डर के साथ दूसरा डिसऑर्डर के थोड़े साइंस एंड सिम्टम्स ओवरलैप हो जाते हैं इन एन इंडिविजुअल। ये इस प्रकार से है जैसे सर्दी हुई तो साथ में बुखार भी आ गया।
0: बिल्कुल,
1: तो यानी कि अगर एक डिजीज है तो उसके साथ दूसरी डिजीज के सिम्टम्स थोड़े आ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें भी एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के साथ दूसरा डिसऑर्डर के साइंस एंड सिम्टम्स भी आ सकते हैं या 2 डिसऑर्डर्स एक साथ भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ऐसा अधिकांश समय पर देखा गया कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के साथ तो ऐसा डेफिनेटली होता है। क्योंकि पर्सनैलिटी का मतलब है कि एक व्यक्ति इस जीवन में सर्वाइव करने के लिए उसने किस प्रकार का पर्सनैलिटी को कैप्चर कर रखा है, कैसे वो इस जीवन में सर्वाइव करने के लिए, इस जीवन के चैलेंजेस को फेस करने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग महसूस करने के लिए उसने कैसा पर्सोना क्रिएट कर लिया है। अब उस सर्वाइवल मैकेनिज्म के लिए हो सकता है कि एक से काम ना चले, उसको दूसरे का भी सहारा लेना पड़े। तो ठीक इसी प्रकार से 3 डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई। क्लस्टर ए की बात करें तो क्लस्टर ए में कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी ऑफ रहती है, एज इन वो नॉर्मल लोगों से काफी अलग होते हैं, वो नॉर्मल लोगों के साथ उठना बैठना इतना कर नहीं पाते, उन्हें उनकी पर्सनैलिटी को देखकर, लाइक ऐसे इंडिविजुअल्स को देखकर सामने बैठा इंसान खुद सोच सकता है या समझ सकता है कि कुछ तो ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है शायद ये नहीं पता, पर कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति के साथ। इसमें क्लस्टर ए में हमारे 3 बेसिकली जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं वो है हमारा पहला पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो पैरानोया स्किज़ोफ्रेनिया एक अनदर डिसऑर्डर है। तो स्किज़ोफ्रेनिया में जब पैरानोया होता है वो अलग है, पर ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पर्सनैलिटी में उसको शक रहेगा ही रहेगा, कभी ऐसा नहीं है कि वो शक कभी हमेशा के लिए चला जाएगा, नहीं, वो शक परसिस्ट करता रहेगा थ्रू आउट देयर लाइफ। कभी किसी व्यक्ति के ऊपर शक जाएगा, कभी किसी व्यक्ति पे शक जाएगा, कभी ऐसा लगेगा कि कोई मुझे मारना चाह रहा है या कोई मेरे बारे में खराब बातें सोच रहा है, कोई मेरे बारे में खराब बातें कह रहा है, वो मेरी कहते ना मेरी चुगली करता होगा या वो लोग मुझ पर हंसते होंगे, उन्हें इस प्रकार के थॉट्स सताते रहते हैं और वो इसी प्रकार की बिलीफ के साथ जीते, तो इसलिए उनके साथ वो उनके लिए दोस्ती करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। फिर आता है स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड थर्ड वन इज स्किज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दोनों में ही ऐसे देखा जाता है कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पर एक व्यक्ति को बहुत स्पेस चाहिए होता है, जैसे स्किज़ोइड है उनको बहुत स्पेस चाहिए होता है, दे डू नॉट वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद। अगर गलती से ऐसे व्यक्ति की शादी हो जाती है तो वो कभी भी अपने वाइफ के साथ या अगर गर्ल को है तो हस्बैंड के साथ वो अपना रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर पाते, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। उनके पार्टनर हजारों कोशिशें करते रह जाएंगे टू डेवलप अ गुड रिलेशन बट वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिसऑर्डर है ना तो उनको नहीं लगेगा कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, उसको लगेगा कि बस मैं नहीं चाहता एंड दैट इज इनफ। उनके पास रीजंस नहीं होंगे, उनके पास बताने के लिए एक्सप्लेनेशंस नहीं होंगे, उनके पास वो सोशल जो एक डेवलपमेंट होता है रिलेशन में वो नहीं होगा, उनके दोस्त भी नहीं होंगे, उनको लगेगा कि मैं लोगों से अलग हूँ। और एक है स्किज़ोटिपल जिसमें लगेगा कि ये दुनिया ही अजीब है, ये दुनिया इतनी अजीब क्यों है, उनको लगेगा मैं यहाँ फिट नहीं होता, वो भी अलग अलग रहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो तीन डिसऑर्डर्स हैं इन तीनों में कॉमन क्या देखा जा रहा है कि ये ऐसा जो व्यक्ति होगा उनको सोशल रिलेशंस डेवलप करने में चैलेंजेस आएंगे।
2: बिल्कुल,
1: इनकी थोड़ी अपनी दुनिया होती है, अपने
2: भीतर में रहना पसंद करते हैं।
1: बिल्कुल। अब आगे हम लोग बढ़े उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले ले रुचिका
2: जी। बिल्कुल मैम, कहते हैं ना कि बातों के साथ साथ थोड़ा सा, और बातें बहुत गंभीर चल रही हैं, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हैं तो दोस्तों गंभीर तो होंगी ही, और अक्सर हम खुद में रहना पसंद करते भी हैं, आप ये सभी जानते हैं। थोड़ा सा और जानकर देखिए कि सच में आपके साथ भी ऐसा होता है, रिलेशंस डेवलप करने में मुश्किलें आती हैं या नहीं आती, ये जो बातें हमने की कहीं आपके साथ ऐसा हो तो नहीं रहा, ये डिसऑर्डर कहीं आपको खुद में देखने को तो नहीं मिल रहा, क्योंकि अक्सर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे साथ होती हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो जब हमें जानकारी मिलती है उस चीज से जुड़ी तो हम उसे अच्छे से समझ पाते हैं।
1: इसमें बस हम एक बात ऐड करेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे कुछ चैलेंजिंग फेज से गुजर रहे होते हैं तो उनको या ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं तो वो जो है उनके लिए रिलेशंस बिल्ड करना उस दौरान डिफिकल्ट हो जाता है, या अगर कोई ब्रेकअप फेज से गुजर रहा है या अगर देयर फ्रेंड्स हैव घोस्टेड देम और तब उन्हें डिफिकल्टी हो रही है, इन सिचुएशंस में आपको ये डिसऑर्डर नहीं होगा तो अपने ऊपर लोड भी नहीं लेना है। ये जो डिसऑर्डर है ये बहुत एक्सट्रीम एक्सट्रीम एग्जांपल्स के बारे में बात करी जा रही है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी कमरे से बाहर आना पसंद ही नहीं करता है, जो हफ्ते तो हफ्ते में शायद एक बार बाहर आता हो, और जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अगर आप कर रहे हैं कहीं से कनेक्ट कर पा रहे तो जरूरी नहीं कि यही वाला डिसऑर्डर हो। तो अगेन आप बस इतना समझिए, अगर ये कोई भी साइन या सिम्टम आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप एक बार मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कनेक्ट करिए, कंसल्ट करिए, क्योंकि सही डायग्नोसिस तो वही देंगे। अपने ऊपर किसी भी तरह के टर्म को लेबलाइज नहीं करना है, ये समझना है कि हम अवेयरनेस के साथ
2: आगे बढ़ेंगे,
1: सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे और जीवन को बेहतर बनाएंगे।
2: मैम के कहने का मतलब एक ही है कि खुद डॉक्टर नहीं बन जाना है, जिस चीज के लिए जो जो हमारे लिए सुविधाएं हैं उनके पास जाइए और उस सुविधा का लाभ उठाइए, तो ताकि हमारी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान ले तो वो भी हमारे लिए परेशानी बन जाती है। खैर, तो इस परेशानी को दूर करते हैं, यानी कि इस गंभीर बात से थोड़ा सा आपको मनोरंजन की ओर लेकर चलते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम में ये एक खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आप सभी के साथ इस प्यारे से कार्यक्रम में और बहुत ही खास जानकारी के साथ। तो आइए आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। पर्सनालिटी तो हर किसी ने सुना है, हर कोई अपनी पर्सनालिटी को हाई लेवल पे रखना चाहता है, दिखावे के चलते ही सही, लेकिन कौन चाहता है कि हम किसी से कम दिखें? तो जरूर दिखिए, लेकिन साथ ही डिसऑर्डर की हम बात कर रहे हैं तो उस चीज को भी ध्यान में रखिए। तो मैम हम बात कर रहे थे, मैम ने अभी बात की कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर को कितनी कैटेगरीज में जो है उसे डिवाइड किया गया है। तो क्लस्टर ए की हमने बात की जिसमें कि शक की ज्यादा हमारे में गुंजाइश रहती है या फिर हमें खुद के साथ ज्यादा रहने की आदत होती है, एक कमरे में बंद रहने की आदत होती है। तो क्लस्टर बी की ओर बढ़ते हैं आगे और उसके बारे में जानते हैं कि आखिर क्लस्टर बी में पर्सनालिटी डिसऑर्डर को किस तरह से लिया गया है, किस तरह से उसे हमारे लिए पहचान बनाई गई है। तो मैम जरूर हमारे दोस्तों को इसके बारे में बताइए।
1: देखिए क्लस्टर बी जो है डिसऑर्डर, वो बेसिकली कुछ ऐसा है कि जहाँ पर लोगों को सोसाइटी में ढलने में घुलने में थोड़ा दिक्कत रहेगा, यानी कि उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस हमेशा खराब रहेंगे। वो रिलेशंस बनाना तो चाहेंगे लेकिन एक प्रकार की स्टेबिलिटी उनमें नहीं आ पाएगी। अब क्लस्टर बी में जो डिसऑर्डर्स हैं वो हैं चार। पहला है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे व्यक्ति के अंदर मल्टीपल टाइप के डिसऑर्डर्स के साइंस एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं और डायग्नोसिस के समय पे ऐसा लगता है कि इनको तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन तब भी कोई फुल वो तो ना कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर का वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते हैं, तब उन्हें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दिया जाता है। इनकी जो पर्सनैलिटी, इनके बारे में थोड़ा बात करेंगे
0: जी।
1: ये ऐसे लोग हैं जिन्हें फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है। इनको लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे इसका बहुत डर रहता है। इनके अंदर सेल्फ डाउट रहता है। इनके अंदर ये मल्टीपल रिलेशंस डेवलप कर सकते हैं या फिर इनके अंदर ऐसा भी होता है कि लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम बहुत रहेगी। इनको ये रहेगा कि कोई शायद हमें पसंद नहीं करता है। इन ये चाहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, तो वो ड्यूअलिटी रहेगी और सुसाइडल थॉट्स या फिर सेल्फ हार्म बिहेवियर ये चीज़ें भी देखी जाती हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऑन दी अदर हैंड सेकेंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है उसको बोलते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसको लाइक अटेंशन को ग्रैब करने के लिए वो कुछ अटपटी चीजें करते रहेंगे, जैसे कि अटपटे शब्दों का प्रयोग करना, अपने इमोशंस या भावनाओं को प्रकट करने के लिए वो कुछ एक्सट्रीम टाइप के वर्ड्स का यूज करेंगे। वो एक्सट्रीम टाइप से अपने आप को कैरी करेंगे। उनका जो पहनावा होगा, जो मेकअप होगा, वो बहुत लाउड होगा। यहाँ तक कि इनके भी मल्टीपल रिलेशंस होंगे, इनको भी प्यार की कमी रहेगी, इनको लगेगा हमें बस प्यार चाहिए और उस प्यार को पाने के लिए बहुत कुछ करेंगे, पर वही बात है कि इनका रिलेशंस अच्छे डेवलप नहीं हो पाएंगे। तीसरी कैटेगरी आती है जहाँ पे बोलते हैं इसको नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है, इसमें जो व्यक्ति होते हैं इनके अंदर एक सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी होती है, सुपीरियोरिटी की, मतलब मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं। इनको ये ख्याल रहता है कि मैं जो हूँ मैं सब कुछ हूँ या मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं या तो मेरे पास बहुत सारा पैसा है या तो मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ या मेरे इशारों पर दुनिया चलनी चाहिए। अगर आप इनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करेंगे तो इनको इंसल्ट फील हो जाता है। इनको इनके अंदर एट द कोर तो एक्चुअल में इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम होता है, बहुत इनसिक्योर होते हैं ये, पर क्योंकि पर्सनैलिटी है जो मास्क है वो कैसा है, वो रहेगा हाईली कॉन्फिडेंट शो करेंगे वो। इनके अंदर ऐसा अलग सा करिश्मा रहेगा, आपको लगेगा कि यार ये तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। पर यही लोग जो अपने पर्सनल रिलेशंस के साथ होंगे, वाइफ हस्बैंड के साथ या फिर बच्चों के सामने, तो वो बहुत ही अलग तरह की पर्सनैलिटी होंगे। तो सोशल लेवल पर तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को लगेगा कि इनसे अच्छा व्यक्ति तो कोई नहीं है, ये तो बड़े विनम्र हैं, सॉफ्ट हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, पर असली सच्चाई सिर्फ उनके घर वालों को पता होगी क्योंकि वो वहाँ पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऐसे लोगों को पावर चाहिए होती है। ऐसे लोग जो हाई स्टेटस ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूट्स या पीपल होते हैं उनके साथ कनेक्शंस बिल्डअप करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे मैनिपुलेटर्स होते हैं, झूठ बोलते हैं और गैस लाइट करते हैं, यानी अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे
0: नहीं माने।
1: और आपको बोलेंगे कि आपने ही गलत किया है, और आप में ऐसा डाउट क्रिएट कर देंगे कि आपको लगेगा कि अच्छा हो सकता है मैंने ही गलत किया हो। तो ऐसा होता है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। चौथा डिसऑर्डर जो है वो है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को पहले साइकोपैथ बोला जाता था, जिन्हें जिन इंडिविजुअल्स को ये होता था उनको साइकोपैथ या सोशियोपैथ बोला जाता था। आपने देखा होगा कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ को जिनको लॉ ब्रेक करने में बहुत मज़ा आता है, उनके लिए रूल्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती और ऐसा आप उनके अंदर बचपन से ही देखना शुरू कर देंगे। तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए बोला जाता है कि अगर कोई बच्चा में इस प्रकार के साइंस एंड सिम्टम्स हैं, उसके लिए अलग प्रकार का डिसऑर्डर है, कंडक्ट डिसऑर्डर बोला जाता है, कि जहाँ पर बच्चा बड़ों की बात नहीं सुनता टू एन एक्सटेंट कि वो बड़ों को हार्म कर सकता है, प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, वो आपको गालियाँ भी दे रहा है और वो रूल्स भी ब्रेक कर रहा है, वो बेसिकली आपके हाथ के एकदम बाहर जा चुका है, जहाँ पर अब आपको पता ही इसने तो क्राइम वाली हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। यानी अगर बच्चे के लेवल पर कंडक्ट डिसऑर्डर का अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए, तब बड़े होकर उसको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेफिनेटली डेवलप होना है, जो कि सोसाइटी के लिए भी बहुत ही हानिकारक हो सकता है। अब आप देखेंगे जुवेनाइल केसेस में जितने भी बच्चे होते हैं वो अधिकांश लोग कंडक्ट डिसऑर्डर के शिकार हैं, और जो क्राइम करके बैठे हुए हैं लोग एडल्ट्स, उनको अधिकांश लोगों को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो जो सीरियल किलर्स भी निकल रहे हैं वो कौन है? एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले। अब ये सिर्फ वो ही नहीं होते जो क्राइम ही कर रहे हैं, ये अदरवाइज भी लोग होते हैं, जैसे कि ड्रग्स का कंजम्पशन करना। ड्रग्स का कंजम्पशन करना पता है सबको कि ये इलीगल है,
0: बिल्कुल
1: इलीगल एक्टिविटी है। प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्वमेंट होना पता है कि ये इलीगल है, बट येट दे विल बी इन्वॉल्व। और अगर आप इन्हें बताने का प्रयास करेंगे तो वो आप बोलेंगे चुप बैठो, वो नहीं सुनेंगे, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें एक आज़ादी महसूस होती है, वो अपनी अपनी चलाएंगे। और ऐसे लोगों में एक सेंस ऑफ डोमिनेंस भी होगा, इनको फियर नहीं होगा, इन्हें लॉ का कोई फियर नहीं होता। तो बेसिकली ये जो क्लस्टर बी वाले हैं, आई थिंक कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी अगर देखा जाए तो सभी में एक प्रकार का, या तो इनको अटेंशन चाहिए, अटेंशन तो इनको मिल ही रहा है कहीं ना कहीं लेवल से, जो व्यक्ति क्राइम ब्रेक कर रहा है, रूल ब्रेक कर रहा है, या जो व्यक्ति लाउड कपड़े पहन रहा है, एक बहुत ही ड्रामेटिक वे में, लाइक लाउड वे में अपने इमोशंस को एग्जैजरेट करके एक्सप्रेस कर रहा है, या फिर एक व्यक्ति अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहा है, हर वे में कहीं ना कहीं से उनको अटेंशन तो कहीं ना कहीं मिल रही है। तो यानी कि देर इज समथिंग, जो इनके बचपन में ऐसा कुछ हुआ होगा जहाँ पे इन्हें अटेंशन नहीं मिली होगी, और अटेंशन पाने के लिए, और अटेंशन यहाँ पे बुरी चीज नहीं होती है क्योंकि अटेंशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद लव एंड केयर। तो अगर एक बच्चे को प्यार और केयर मिली ही ना हो तो ऐसे में बच्चा और क्या कर सकता है? तो अननोइंगली अनकॉन्शियसली उनका माइंड ऐसा पर्सनैलिटी मेकअप कर देता है। पर अगेन इन पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, क्योंकि ये दोनों डिसऑर्डर्स सोसाइटी के लिए बहुत हानिकारक होते हैं।
0: बिल्कुल। तो अब ये जो बातें सुनी है ना, दोस्तों ने भी सुनी और मैंने भी सुनी, तो दोस्तों आपको भी यही लग रहा हो कि हमारे आसपास तो ऐसे बहुत से लोग हैं, तो हम उन्हें भी इस डिसऑर्डर से मतलब कि गुजरता हुआ बोल सकते हैं या फिर क्या?
1: देखिए कुछ ना कुछ साइंस तो होंगे ही, बेसिकली उन सबको जरूरत है कि वो अपने ऊपर काम करें। डिसऑर्डर है या नहीं वो एक अलग बात है, वो तो प्रोफेशनल्स के लिए है ना। आप उन्हें डिसऑर्डर के एस्पेक्ट से ना देखें, आप ये देखें कि उनमें ऐसा कुछ ना कुछ घटित हुआ है उनके जीवन में जिसकी वजह से आज वो इस परिस्थिति में है। यानी कि उन्हें प्यार चाहिए, उन्हें केयर चाहिए, उनको अटेंशन चाहिए, यानी कि उन्हें मदद चाहिए। उनकी ये जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, थॉट्स पैटर्न या इमोशनल पैटर्न्स हैं, ये एक प्रकार का उनका माइंड का एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो चीख चीख के बोल रहा होता है कि सेव मी, सेव द इनर चाइल्ड। तो अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं या आप खुद ऐसे व्यक्ति हैं, सो आई रिकमेंड दैट प्रोग्रेस इज पॉसिबल, लाइफ कैन बी बेटर, आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। और आप जब ये काम करेंगे तब आपको अकेले काम करने की आवश्यकता नहीं है, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपके साथ साथ चलते हैं। तो अपने आप को ओपन करें टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ, टुवर्ड्स अ बेटर यू।
0: बिल्कुल सही कहा है मैम ने दोस्तों, क्योंकि बात घूम फिर के एक ही आ रही है कि अपने आप पे काम करना कितना जरूरी है। तो ये तो आप सभी समझ चुके हैं कि अक्सर हम अपने आप को इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, या तो जैसे मैम ने बात की अटेंशन और लव केयर जो है हमें चाहिए होती है, खास करके बच्चों की हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी इनसिक्योर फील करते हैं तो वो फिर उस अटेंशन को पाने के लिए किस हद तक चले जाते हैं, वो फिर तभी तो क्राइम का रूप ले लेते हैं और गलत गलत रास्तों की ओर बढ़ते जाते हैं। फिर उन्हें एक तरह से डर किसी भी चीज का रहता ही नहीं, जब वो इन चीजों से गुजरते हैं ना तो उन्हें वो डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है क्योंकि उन्हें आदत बन चुकी होती है एक तरह से। उन्हें पता है कि कुछ टाइम के लिए होगा, उसके बाद फिर हो जाएंगी चीजें, या तो उन्हें पता है कि हमारे लिए सब कुछ है, हमारे पीछे खड़े हैं सभी, वो कुछ होने ही नहीं देंगे। तो वो निडर, फिर वो जो मैम ने पहले कहा था कि लॉज को ब्रेक करना, मानना ही नहीं कि कोई लॉज भी है हमारे लिए,
1: फाइट्स पिक करना,
0: बिल्कुल जी,
1: मार पिटाई
0: जी, तो यही सब बातें हैं क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं हम अपने आसपास जो माहौल देखते हैं, जो चीजें ऑब्जर्व करते हैं, उसी से शुरुआत होती है। तो दोस्तों अब जो है हमने क्लस्टर ए की बात की, क्लस्टर बी की बात की, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ये आप सभी जान चुके हैं। तो क्लस्टर सी जो पेंडिंग रह गया है तो उसको मुझे लगता है मैम कि अगले हमें एपिसोड में बात करनी चाहिए।
1: बिल्कुल
0: जी, तो दोस्तों अगले एपिसोड में हम क्लस्टर सी के बारे में आप सभी के साथ बातचीत करेंगे क्योंकि अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। तो बहुत ही खास बातचीत के साथ और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अब दीजिए अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रेयसी को
0: अनुमति कार्यक्रम सम्पन्न करने की। तो दोस्तों अगले हफ्ते इस बात को जरूर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज जो हमने बातचीत की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में पनप रही होंगी, उठ रही होंगी, बहुत सारे सवाल निकल कर आ रहे होंगे, जैसे मेरे मन में भी अभी बहुत ज्यादा सवाल कि नहीं, हम तो आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो जो मैम ने साइंस एंड सिम्टम्स बताए, तो क्या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में है, कंफ्यूजन है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो हमारा नंबर रहेगा
1: 9354134057। आई विल रिपीट वन मोर टाइम, 9354134057।
0: और अगर आपको लगता है कि फोन पर हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं तो आप डायरेक्टली सेंटर आ सकते हैं और सेंटर में आके अपने सवालों के जवाब, अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। हमारे सेंटर का पता रहेगा
1: वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर, शीला, अपोजिट मांझी पुल, धर्मशाला।
0: जी दोस्तों, तो नंबर भी आप सभी तक पहुंच चुका है और सेंटर का पता भी आप सभी तक पहुंच चुका है, तो देर किस बात की है, सवालों के साथ फटाफट से फोन उठाइए और कॉल कर दीजिए या तो सेंटर पहुंच जाइए। फिलहाल दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड होस्ट रुचिका और
1: प्रेयसी
0: कार्यक्रम संपन्न करने की। अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात इसी बातचीत के साथ, तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, धर्मशाला, गूंज अपने मन की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौड़ में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के चेश के चेश के चेश के चेश के चेश

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों सिंधियों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर कोई बात नहीं
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं कुछ नहीं, पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई गहने गाड़ी 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।

हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.9 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आज ही दोस्त रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों 91.9 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो रिंजन धर्मशाला और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं पंजाबी गीतों के कार्यक्रम में। बिल्कुल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

नमस्कार दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के चमकते सितारों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं आपके अपने शहर कांगड़ा में। तो याद रखिएगा, 28 जून 2026 रविवार को सुबह ठीक 9 बजे से जीएबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा में ये भव्य शाइनिंग स्टार फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7710 7712 या फिर 7888 8819356। धन्यवाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों, सैमियों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं, कुछ नहीं। पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई, गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो, ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
4: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों
4: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
6: मेरा रहा
10: कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
6: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
11: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
12: मोहित, मेरा इस्तीफा।
13: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
12: सॉरी यार,
13: काम कीजिए आप लोग।
11: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला था।

92.2 MHz पर ए तुहां सारियांदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला दर्शुताओं मैं शशि हाजिर हो कार्यक्रम लेकर माटी दी महक तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तुहां सारियांदा ही स्वागत है कने तुहां सारी ठीक ठाक होने न कने अपना जेड़ा रोजाने है ये कामकार है तुसी करा दे होने न क्योंकि हर दिन अहां कामकार जिहड़ा न से करते रहते न जिहड़ा भी अहां काम सोचे होंदे से अहां करते न कने अपना हर पल जिहड़ा इंजॉय है सभी जरूर करते न। तो कार्यक्रम की जिहड़ा शुरुआत या आगाज अहां प्यारे दे गीत कने करने फ्री ते तुहां कने वापिस जिहड़ा है से तुहां तक कौन है गलबात ले करी तो जरूर कार्यक्रम का आगाज अहां कर देना इस प्यारे दे गीत कने तुहां सारे भी इस गीत जो इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंथी

0: ये तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहा सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इसी कन्ने तुहा सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी शुरुआत हाँ इस गीत कन्ने करी थी है कन्ने तुहा सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम दा जेड़ा समय तुहां तक रहिंदा है से रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। बार बार हाँ कार्यक्रम दा जेड़ा समय है से जरूर तुहां तक पहुँचान देन क्योंकि जितने भी श्रोता न तिना सारे जो ही पता लगना चाहिए कि माटी दी महे कार्यक्रम दा जेड़ा सफ़र तिना तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक क्योंकि समय जेड़ा है से अहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करदा है। 2 बजे करी 10 मिनट कार्यक्रम च होइयां न कने अगर अहां समय ते थोड़ा भी अग्गे पिछे होई जांदे न तो कुथी ना कुथी अहां समय जो खोइंदे न या ये कार्यक्रम 2 ते 3 चलना है तो तुहां इस कार्यक्रम जो समय अनुसार नहीं सुनदे न तुहां अपना रेडियो सेट 3 बजे ऑन करदे न तो तुहां इस कार्यक्रम जो मिस जेड़ा है से जरूर करींदे न। समय कने इंसान दी अहां गल करिए बड़ी प्यारी गल है समय उपर ही अहां जेड़ा गल है से करा दे न कि एक दिन जेड़ा है से समय दी जेड़ा इंसान कने मुलाकात जेड़ा है से जरूर होंदी है। समय जेड़ा है से मुस्कुराई करी बोलदा है से हमेशा इंसान जो पुछदा है कि जेड़ा इंसान है से हमेशा समय जो दोष दिंदे न या समय जो हमेशा कोसदे रहंदे न। अगर अहां अपनी जिंदगी च अग्गे बढ़ना है तो अहां हमेशा समय जो कोसदे न या अपनी किस्मत जो कोसदे न। पर समय जेड़ा है से अहां जो ये बोलता है कि मैं तो सारे वास्ते एक है मेरे वास्ते भी समय जेड़ा है से एक है कने जेड़ा बाकी हैं तिना वास्ते अगला जेड़ा व्यक्ति है तिस वास्ते भी समय मैं समान है सारे वास्ते समान है। पर फिर भी जेड़ा से सारे मिंजो जेड़ा से कोसदे रहंदे न अजीब जेड़ा गल है से है कि मैं तो सारे वास्ते ही बराबर है पर फर्क बस इतना है कि अहां समय दा जेड़ा सदुपयोग है से किस प्रकार कर देन या समय जो किस प्रकार संभाली करी रख देन मैं समय जो किस प्रकार संभाली करी रख दी है या अगला जेड़ा व्यक्ति है से किस प्रकार समय जो संभाली करी रखता है कने इसी कन्ने जेड़ा समय जो संभाली करी रख देन से अपनी जिंदगी च सफलता दी ओर बढ़ देन कने अगर हाँ समय जो बेफालतू च गवाई देन या समय दा दुरुपयोग कर देन तां हां कुथी ना कुथी समय जो बिल्कुल जेड़ा है से गवाई देन तो इंसान जेड़ा है से सोच पी जांदा है कि समय तां हां जो सारे जो ही बराबर है पर फिर भी जेड़ा है से हां सफलता दी ओर अगे नहीं बढ़ी पांदे न क्योंकि समय भी अपनी जगह सही है कि अहां अगर समय दे अनुसार चल देन तो हम भी तो हम सारे जो पता है कि अगर तो हम इस कार्यक्रम ते अगे पीछे जुड़ देन या 3 बजे बाद जुड़ देन तो हम इस कार्यक्रम जो नहीं सुनी पान देन। इस कार्यक्रम दा जेड़ा समय है से 2 ते 3 है तो समय दा जेड़ा सही सदुपयोग अगर अहां कर देन तां ही अहां अपनी मंजिल तक पहुंची पान देन कने अगर अहां समय जो व्यवर्थ कर देन या बेफजूल दुरुपयोग कर देन तहां समय भी अहां ते जेड़ा से दूर चुपचाप जेड़ा से दूर चली आंदा है तहां जो क्या सीख जेड़ा से मिलती है समय जेड़ा से कुसी दा भी इंतजार जेड़ा से नहीं करदा है। अगर अहां समय दी कीमत समझी लैंदे न तहां हमेशा अपने जीवन च अगे बढ़दे जांदे न। ताशो तो समय दी ये गल बड़ी प्यारी है इसी कन्ने अहां अग्गे बढ़ने है कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश से तुहां तक पहुंचानी है तुहां सारे भी समय दे अनुसार इस कार्यक्रम च जुड़िया कन्ने इन्ने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंदी
1: कन्या की चाचियां ताइयां सखियां सहेलियां कन्या को घुटना लगाने की रस्म पूरी करती।

ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सारे कार्यक्रम सुना थे ना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने दर्शो तो समय दी कन्ने हाँ इंसान दी जड़ा गल है से जरूर इस कार्यक्रम च करा देन। इंसान जड़े से हमेशा समय जो कोसदा रहता है, हमेशा अपनी किस्मत जो जड़े से कोसदा रहता है, पर कई बार हाँ अगर अपनी गल पर गौर करिए या अपनी गला पर गौर कर देना तो कुथी ना कुथी गलती जड़े से हमेशा इंसान दी होंदी है। अगर अहाँ समय के अनुसार चल देना, समय के अनुसार अहाँ अपने सारे ही काम कर देना, जिन्हें कि तुम सारे जो ही पता है कि समय के अनुसार मौसम भी अपना जड़ा बदलाव है से लेंदा रहता है, कने मौसम के अनुसार ही जड़ा सीजनल सब्जियां न या सीजनल जड़ा फ्रूट है न सभी मौसम के अनुसार चेंज होते रहते न, कने तो हर चीज़ समय के अनुसार अच्छी लगती है, पर कई बार हाँ कई अपना जड़ा जिंदगी है, जिंदगी जो ये सोची करी चलते न कि नहीं अहाँ दी जड़ा जिंदगी है से हमेशा बेकार है, पर जिंदगी जो अहाँ हमेशा कोसते कहो न कर्मा दा जिड़ा लिखा जो कह सर सब कुछ इतु ही है। अगर अहाँ अच्छे कर्म कर देन या अच्छी बाणी अपने अंदर रख देन या अच्छा व्यवहार अहाँ अपने अंदर रख देन तो सबसे अच्छा है। अगर अहाँ किसी ने प्यारे ने गल कर देन क्योंकि

ज़िंदगी च प्यार कने सम्मान होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। चलो अगला व्यक्ति यहाँ जो प्यार मान सम्मान नहीं देता, फिर भी अपनी तरफ से अच्छा सोचा, अच्छा सोचने च क्या जाता, टेंशन अहाँ खुद जो दिन देन, अगर अहाँ खुद जो टेंशन दिन देन तो कुछ ना कुछ अहाँ अपनी सेहत जो नज़रअंदाज कर देन। तशो तो ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी एक बारी मिलनी है, अगर तो हाँ इस जो हंसी खुशियाँ ने बिता देन तो हाँ हर पल जो इंजॉय करी पाते न, तो हर पल जो इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तशो तो इसी कने अगे बढ़ते न कने तो हाँ सारे जो ये लेकर चलते न गीत संगीत और सुनते निशा प्यारी दिया फरमाइशा, जो तो हाँ सारे भी ईसा फरमाइशा जो इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंदी। तो जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़िया कने मैं तुहां तक ये गीत पहुंचा दी है, तुहां सारे भी इस गीत जो ज़रूर इंजॉय करा।

0: ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि करने दर्शकों तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ करने जुड़ी सकते करने यहाँ करने गल बात जड़े से जरूर करी सकते। इस सफर च तो हाँ सारे ही सुनिया ये गीत फरमाइशी कार्यक्रम है फरमाइशा भी यहाँ तक पहुँच दिया न कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम च जुड़ी सकते जुड़ने वास्ते जिहड़ा हाँ दा नंबर है से तो हाँ तक पहुँचाई देना क्योंकि नंबर तो हाँ तक पहुँचाया होगा ताई तो हाँ इस नंबर पर कॉल करी सकते या टेक्स्ट मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज करी सकते। नंबर है 701-8117091 तो इस नंबर पर तो हाँ कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। तो शो तो समय दी बड़ी प्यारी जड़ा गल है से यहाँ लगाई है समय जड़ा से यहाँ दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। आहाँ कोई भी काम कर दे न अगर आहाँ इस काम जो पूरी लगन मेहनत ने कर दे न तो जरूर आहाँ इस काम च सफलता जड़ा है से हासिल करी पाते न। पर आज कने दौर दी अहाँ गल करिए अहाँ हमेशा समय जो कोस दे न पर अपनी गलती जड़ा है से नहीं दिखते कि अहाँ कुथू गलत हन या हाँ कुथू अपनी गलती जो सुधार दे न या कुथू अहाँ अपने समय का सदुपयोग करा दे न। बच्चों की गल करिए बच्चे या युवा पीढ़ी अपना ज़्यादातर समय मोबाइल फोन च दे देन। ठीक है मोबाइल फोन भी फायदेमंद है फायदे भी हैं नुकसान भी है पर अहाँ किस प्रकार मोबाइल फ़ोन का यूज़ करा दे सही जगह करा दे कि गलत जगह करा दे हर चीज़ समय के अकॉर्डिंग चलती है पर अहाँ किस प्रकार समय के अकॉर्डिंग चलते न से यहाँ पर निर्भर करता है। देखा मैं तो सारे जो ही बोलिया था कि समय जड़ा से अपनी रफ्तार लेकर ही चलता है तो 2:29 कार्यक्रम च हुई न तो सारे भी जल्दी जल्दी जुड़िया ये सफ़र तो तक है 2-3 तक सफ़र जड़ा से तो जरूर इंतज़ार करा दे फरमाइशी कार्यक्रम में तो सारे भी अपनी पसंद का जड़ा गीत है से इस कार्यक्रम च सुनी सकते कने समय पर अपनी जड़ा गल बात है सभी जरूर यहाँ तक पहुँचाई सकते यहाँ तक साझा करी सकते। पुराने समय की अहाँ गल करिए पुराना जड़ा समय है से सबसे बेहतर था सबसे प्यारा था बेशक अहाँ जागरूक नहीं थे जागरूक भी थे नहीं भी थे पर प्यार भावना जड़ा से एक दूसरे अंदर दिखने जो मिलती थी रिश्तों का जड़ा मतलब है या रिश्तों जड़ा प्यार भावना है से हमेशा एक दूसरे अंदर कायम रहती थी परिवार च जड़ा से एकजुटता थी या परिवार की अहाँ गल करिए अजकने दौर की गल कर तो कुछ ना कुछ एकल परिवार जड़ा से तो हाँ जो दिखने जो मिलता है कुछ कुछ जड़ा से संयुक्त परिवार भी होने न पर संयुक्त परिवार की क्या खासियत थी संयुक्त परिवार की खासियत थी कि मिली जुली करी अगर घरे च कोई फंक्शन है सभी मिली जुली करी इस फंक्शन का भी पता नहीं चलता था फिर चाहे से खेती बाड़ी के काम प्यो न उरां दे जेड़ा काम मन से कुथी कुथी प्यो न तो अहाँ जो से पुरानियां यादा जरूर याद होंदिया न कि नहीं मिली जुली करी काम करते थे मिली जुली करी जेड़ा खाना है से खाते थे कने इसी कने उर भी जड़ा से यहाँ लगाते थे तो कने पेड़ दी छाँव दे नीचे यहाँ पेड़ दी जेड़ा छाँव है से कुथी ना कुथी ढूंढते थे तो देखा पेड़ भी यहाँ दी जिंदगी कितनी अहम भूमिका अदा करते न तो इसी कने हाँ आगे बढ़ते न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तो हाँ तक पहुँचाते न अगली फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए नरवाणा ते कने तिना दा नाम है वंदना जी तक कहाँ ये गीत ये फरमाइश पहुँचानी है तो हाँ सारे ही क्या करना है इंजॉय करना है अपना कामकार भी करना है कने इस कार्यक्रम दे सफ़र जो भी ज़रूर इंजॉय करना है। करे तो सारे भी इस कार्यक्रम च फरमाइशी कार्यक्रम है तो तुह भी फरमाइश जड़ा है से जरूर करी सकते, फेसबुक के माध्यम करने भी करी सकते, करने कॉल करी करी भी तुह इस कार्यक्रम च जड़ा है से फरमाइश करी सकते। तो फरमाइश करने वास्ते जड़ा हाँ दा स्टूडियो दा नंबर है से तुह तक पहुँचाई दे न, तो सारे इस नंबर जो नोट करा जल्दी जल्दी। नंबर है 701-811-7091। ये नंबर तुह तक पहुँचाईता है, कने पहले श्रोता हाँ कने जुड़ चुके हैं न, कर देन तिना कने गल बात। हेलो हेलो, नमस्ते जी। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हां जी, धन्यवाद जी।
0: जी तुहां कुत्थों ते बोला दे, कने तुहंदा ना की है जी?
1: जी अजय कपूर
0: जी। अजय जी, क्या हाल चाल है रक्कड़ आलेयां दे?
1: सब बढ़िया जी, सब बढ़िया
0: जी।
1: तो देर कल बरखा लगी जी, जरा जरा फिर वो चुकी जी।
0: जी बरखा जेड़ा है से किनी किनी के चली है ना जी?
1: हां जी हां जी
0: जी। अजय जी, आज हां जेड़ा गल बात करा देना से करा देना समय दी, अगर तुहां कार्यक्रम शुरू ते सुना देंगे तो तुहां जरूर मेरी गल बात जेड़ा है से सुनी ले योनी है जी।
1: हां जी हां जी
0: जी। ता इंसान जेड़ा है से हमेशा समय जो कोसदा है ना जी?
1: जी जी बिल्कुल
0: जी।
1: और समय कुछ ते बस नहीं रुकता नहीं है ना
0: जी? जी
1: समय जेड़ा हां सबसे पहले के जड़ी शुरुआत है समय के अनुसार करनी चाहिए, ज्यादा समय के अनुसार उठना चाहिए।
0: जी जी जी जी। समय जेड़ा से आहंदी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करता है ना जी? जी ता अजय कपूर जी, आज तुह कुंदिया गीत सुनना पसंद करके। हेलो, श्रोताओं कॉल जेड़ा है से डिसकनेक्टेड होई हो, ता जरूर अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न, कने तुह जो ले कर चलते न गीत दी ओर।

0: આહોલાદીન રેડિયો ગુંજન ધર્મશાલા તે કને તોહા સારી કાર્યક્રમ સુણાદીન આપની રેડિયો દો શશી કને ઇસી કને તોહા સારે ગીત એન્જોય કીતા કને ફરી તે આહા વાપિસ તોહા તક પહોંચીયોન ગલબાત લેકવી અગર તોહા સારે અપના રેડિયો સેટ ઓન ની કીત્યા તા જલ્દી જલ્દી અપના રેડિયો સેટ ઓન કરી લ્યા કને કાર્યક્રમ ફરમાઇશી કાર્યક્રમ ચલ્યા તોહા સારે ભી इस कार्यक्रम च जुड़ी सकदे कने अपनी पसंद दा जेड़ा गीत है से जरूर इंजॉय करी सकदे आहंदे जेड़ा अगले श्रोता न जरूर आहां तिना कने करदे न गल बात तिना ते पुछदे न से कुथु ते बोला दे कने तिना दा नां के हेलो
1: हेलो जी नमस्ते
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न
1: जी
0: तो हाँ अपने रेडियो सेट दी आवाज कम करी लेंगे जी
1: जी
0: करी ले तो हाँ आवाज कम
1: जी
0: तो हाँ अपना ना दसा कने कुहा जगह दे रहने आले न जरूर दसी दिया जी
1: तपोवन ते रहने आले न सेतुराम
0: सेतुराम
1: जी
0: ता तपोवन आले दे क्या हाल चाल है जी क्या काम कार छेड़िया तो हाँ आज
1: काम कार छेड़े उरे उरे लगे हिलाना
0: जी अच्छा उरे लगाना लगे हो
1: हां जी हां जी
0: जी कितने की पट्टियां जेड़ा ने से तोहा लगाई थीया
1: बस 8-9 पट्टियां ने सा लाई छड़ियां
0: जी अच्छा 8-9 पट्टियां जेड़ा ने लगाई हड़ियां
1: हां जी हां जी
0: जी और कितनी
1: पानी है ना
0: कितनी की बचियां और

0: कितनी की जेड़ा पट्टियां ने लगाने बचियां होना
1: और नहीं है ना, बस इतनी है ना। हाँ
0: जी? अच्छा इतनी है यान
1: जी, 9 10 पट्टियां ना सर लगाई छड़ी है।
0: जी? अच्छा 9 10 पट्टियां ना से लगाई हड़ियां
1: हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा
0: जी? ओ नोई था
1: देर कम,
0: जी
1: थोड़ा देर कम रखे ना।
0: जी अच्छा थोड़ा के रखे काम था
1: हाँ
0: जी। ता
1: जी,
0: तपोवन वाली साइड पानी तो सारे जो ही होई होना ना जी लगभग
1: हाँ थोड़ा पुराना पानी है ना। हाँ
0: जी? अच्छा पुराना पानी है
1: जी,
0: जी
1: बरखा
0: जी
1: तो हुआ नहीं था। हाँ
0: जी बरखा दी जरूरत है उन ज्यादा ना जी?
1: जी, हाँ जी,
0: जी उन भी मौसम खराब होया था थोड़ा थोड़ा किनी
1: हाँ
0: किनी जड़े ऐसे चली
1: जी, प्राण
0: है जी
1: प्राण हुई बरखा जरा की ना, फिर चली गई।
0: जी जी ता ऊर ऊरी लगांदे ना जी? पहले तो ये होंदा था कि यहाँ टीम भी लगांदे थे ना जी, जलू
1: हाँ
0: अपने
1: जी,
0: अपने बैल थे जी,
1: हाँ जी,
0: पर उन तो से काम बिल्कुल ही खत्म है ना जी
1: उन तो सारा मशीनी युग हो गया है।
0: जी तो मशीनी युग अच्छा लगता कि जेड़ा खुद काम करते थे से अच्छा था
1: नहीं, ये मशीनी युग भी तो महंगा है था।
0: जी? महंगा तो है जी
1: ये देखा ना, जमीन तो
0: जी
1: बंजर हुआ थी ता कि
0: जी
1: इन्हें वो खाद नहीं मिल रही, देसी खाद नहीं मिल रही था।
0: जी जी
1: ट्रैक्टर रख गए तो इतनी खाद तो देनी नहीं है,
0: जी जी
1: गांव में है कुछ बल्द रख गए ता ही खाद होनी देसी।
0: जी बाल्द अगर यहाँ रखे होंगे तो तीदा गोबर भी यहाँ जो मिली आना,
1: हाँ जी,
0: फिर
1: हाँ जी,
0: जेड़ा पट्टियां न सभी जेड़ा ऐसे साफ हुई आनिया थी ना जी,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: कन्या
1: इसे
0: उन
1: होता। हाँ, सब उदी पर ही हुई है ना, दूजिया खादा पर हुई है निर्भर।
0: जी जी दुई ही खादा बरकन है जेड़ा ज्यादातर दवाइयां दा, अगर जरा करी का ज्यादा होता तहां दवाइयां दा छिड़काव जेड़ा ऐसे जल्दी
1: हाँ जी, हाँ
0: जल्दी
1: जी, सही
0: जी, तो कुछ ही ना कुछ यहाँ
1: केमिकल खा रहे। हाँ
0: जी जी दवाइयां ही खा देना जी,
1: जी,
0: इतनी ज्यादा फिरी बीमारियां ना से कारण यही है ना जी
1: हाँ जी, वहां देखा ना, 2 3 दिन हो गए लगाए बना दिया, केमिकल से छिड़की दिया थे इसे।
0: जी जी कने अगर हाँ पहले दी गल करिए ता ना हाँ दवाइयां जड़े से तिना दा छिड़काव करते थे, देसी खाद अपनी खाद जड़े से पांदे थे, कने फसल भी अच्छी होंदी, बेशक फसल
1: हाँ
0: घट होंदी
1: जी,
0: थी पर सहंदी सेहत
1: ताकतवर
0: वास्ते फायदेमंद होंदी थी ना
1: होंगी
0: जी
1: है ना अपनी जगह।
0: जी
1: हाँ
0: जी ताई जेड़ा बुजुर्ग हैं तिना अंदर काम करने दा भी अच्छा रहंदा था ना जी, काम करी पांदे थे, आहे कोई उन
1: हाँ
0: बोले कि
1: जी,
0: तुहा काम करा तो हाँ थोड़ा देर काम कर दे ना कन्या, हाँ फिर थकी आंदे ना जी
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: जी
1: उन्हें
0: जी
1: खाने वो दे रहे था।
0: जी खानी वैसे ना कि यहाँ दवाइयां ही खा देना जी
1: हाँ जी, जान
0: जी तो आज तो हाँ
1: लो
0: कुन
1: देता है, पैक
0: जी
1: खाना, जान लो दे पैक खाना शुरू कर दिया
0: जी
1: देना। हाँ,
0: जी जी
1: ये रेड़ियाँ फड़ियाँ होटला से मंगाई दे दे, बस
0: जी
1: वो
0: जी
1: पता नहीं क्या चीज बनाई के रिखवा दे। समझे,
0: जी फिर ही उन अंबा दा सीजन चल रहा था, पहले इतना हाँ अंब भी जेड़े ऐसे खांदे थे, चाहे लीची है अंब है तो उससे चीज़
1: हाँ
0: हाँ
1: जी,
0: जो पची आंदी थी ना जी, पर उन अगर हाँ थोड़ा देर ज़्यादा खाए लेंदे ना तो कुथी ना कुथी हाँ दी सेहत जेड़े ऐसे हाँ जो दस्तक देना शुरू करी है ना जी। तो आज तो हाँ
1: हाँ
0: कुन
1: जी,
0: दिया गीत सुनना पसंद करके जी
1: अरे वो भजन है ना, करियां कमाले खोटियां खानियां बंदिया दो रोटियां।
0: जी, खरिया कमा ले चाहे खोटियां कमाई ले, खानिया बंदिया दो रोटियां
1: जी,
0: जी जरूर, ये गीत तुहां तक पहुंचाते ना जुड़ने वास्ते बड़ा
1: कोई
0: बड़ा
1: नहीं,
0: धन्यवाद जी तुहांदा
1: धन्यवाद जी, थोड़ा भी हिम्मत है देना, बात करता फोन तो
0: जी
1: भी
0: जी और
1: ठीक
0: जी
1: है सर,
0: जी धन्यवाद जी। ये है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने, इसी कन्ने अहां कार्यक्रम दे सफर जगह वर देन कन्ने तुहां तक ये भजन चिड़े से पहुंचान देन, खरिया कमा लै चाहे खोटियां कमाई लै, खानियां बंदिया दो रोटियां, पैशो तो इस भजने दे जेड़ा बोल हैं से बड़े प्यारे न, चाहे यहाँ खरियां कमांगे चाहे यहाँ खोटियां कमांगे, खानियां सिर्फ हाँ दो ही रोटियां न, फिर भी इंसान जड़े से पता नहीं किस चीज़ का घमंड जड़े से कर दे। तो शो तो हमेशा हंसी खुशी ने अपनी जिंदगी दा हर पल इंजॉय करा। इसी कने तुह सारे तक के भजन पहुँचा दे न, तुह सारे भी इंजॉय करा कने नहीं सुनते रे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

दर्शकों तो सारे सुनिया ये प्यारा दया भजन प्यारी दई फरमाइश। इस भजन की फरमाइश अह जो आई हुए तो पवन ते कने तिना दा ना वे सेतुराम जी तिना तक कहाँ ये भजन पहुँचाया कने तो हाँ सारिया भी इंजॉय किया। इसी भजन कने फिर त्या अगे बढ़ते हैं कने तो हाँ जो ले चलते हैं अगली फरमाइश की ओर, क्योंकि समय जड़ा है सियाल थोड़ा दे है तो समय के अनुसार अगे बढ़ते हैं कने तो हाँ जो ले कर चलते हैं अगली फरमाइश की ओर।

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने तो हाँ सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम दा जिड़ा समय है से तो हाँ तक रहता है 2 ते 3 बजे तक। समय जिड़ा से उन्ह जो बोला था कि उन तो हाँ इजाजत या अनुमति जिड़ा से जरूर ले लिया तो जरूर हाँ इस कार्यक्रम ते अनुमति लैन देन तो हाँ सारी इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गीत भी तुह तक पहुँचाते हैं।

नमस्कार दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के चमकते सितारों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं आपके अपने शहर कांगड़ा में। तो याद रखिएगा, 28 जून 2026 रविवार को सुबह ठीक 9 बजे से जीएबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा में ये भव्य शाइनिंग स्टार फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7710277122 या फिर 7888819356। धन्यवाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मा।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा माँ, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों, सेम्भियों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं, कुछ नहीं। पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई, गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
3: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो, ये भी अच्छा है।
4: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
5: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
6: क्यों
5: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
7: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
8: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
9: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
10: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
7: मेरा
5: क्या कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
7: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
11: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
12: मोहित, मेरा इस्तीफा।
13: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
12: सॉरी यार,
13: काम कीजिए आप लोग।
11: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला था।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 FM। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओ, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

नमस्कार दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के चमकते सितारों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं आपके अपने शहर कांगड़ा में। तो याद रखिएगा, 28 जून 2026 रविवार को सुबह ठीक 9 बजे से जीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा में ये भव्य शाइनिंग स्टार फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7710771122 या फिर 7888891956। धन्यवाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों समझियो के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर कोई बात नहीं
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं कुछ नहीं, पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई, गहने गाड़ी 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
4: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों
4: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
6: मेरा
4: क्या कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर?
6: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
10: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
11: मोहित मेरा इस्तीफा।
12: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
11: सॉरी यार,
12: काम कीजिए आप लोग।
10: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला था।
3: हाँ?

नमस्कार जी, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंचन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहा हूँ। सचिन कपूर हाजिर हाँ कार्यक्रम लेकर हिंदी अपनी गप्पा बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन हाँ सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। क्या हाल चाल है श्रोतों तुंदे, उम्मीद करना तुंदे हाल चाल के अनसो ठीक भुने तो है सब हस्त पुष्ट और तंदुरुस्त भुने मस्त भुने हिन और रेडी गुंजन सो की किया सो बिल्कुल इस समय जुड़ी चुक रहे भुने हिन और आई थिंक सो कि भ्याखने ही जुड़ रहे भुने हिन है ना, क्योंकि कि रेडी गुंजन के सो तुस वास्ते बहुत प्यारे प्यारे कार्यक्रम लेकर इन द हाउ और चलिए फेसबुक के माध्यम तो मैं लाइव बुंदे ने है तो हम रुकी गो थू कार्यक्रम तो है सब हूँ कर देने हिंदी अपनी गप्पा और तो है सब ये ट्यून कर रहे समय FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला हो रहा हूँ। तो सो गई तुम्हें अपना आज ही वीडियो जो कि सचिन कपूर हाजिर हो चुके होते सभी रहे रेडियो सेट में बिल्कुल लाइव है जी। इस कार्यक्रम में तो है ज़रूर जुड़ सकते हैं, अपना पसंदीदा गीत होनी सकते हैं, अपने क्षेत्र की जानकारी वो की साझा कर सकते हैं। जनाब यह गल रहा खास ख्याल रहेगी जानकारी किया सो साझा करने लायक ज़रूर भुआ, जानकारी किया सो रेडियो मंच दसने लायक श्रोताओं ज़रूर भुआ। बड़े मेन गल है, बड़ी अहम गल है ना कि जानकारी दसने लायक ज़रूर भुआ। चलिए जी आगाज असु जरूर करना है कार्यक्रम का बहुत प्यारे प्यारे दे गीत के ने सो असुले हिन जो तुसु तक असु पहुँचाने हिन छो तो बहुत सारी जानकारी इन जो तुसु तक असु पहुँचाने इन छोतों जी रोज़ाना है जानकारी रा पिटारा कि असो तुसु अगो खोल दे हिन। आइया आगाज कर लेते हैं कार्यक्रम का इस गीता सो के और फिर तथों बाद मुल दें तू सब भी जो प्यारे प्यारे गीता सो के बने रहा जुड़े रहा हसु सोगी श्रोताओं यहीं बने रहा हसु सोगी यहीं।

0: इंदे जो लोगी थिन सो उन्हें कह रहे दिल बड़ा तरोताज़ा बुझे गंदा, दिल बड़ा खुश बुझे गंदा, बड़ा ज़्यादा आनंद इंदा है शो तो, है ना, और बड़ा ज़्यादा अच्छा भी लगता है ना। ये गीत बहुत प्यारे बंदे इन शो तो, इंदे लोक गीत के ना सो इंदी संस्कृति जो दर्शन दे हिंद और इंदे जितने भी लोग गायक हैं सो वाकई में अपनी संस्कृति जो जीवित रखने वास्ते किया सो भरपूर प्रयास करते हैं अपने गीत के माध्यम तो। चलिए कार्यक्रम जो आगे बढ़ते हैं और इंदे श्रोतागण असुगे कनेक्ट पूछ गए पूछते हैं कौन बोलते हैं और कड़ी तो बोलते हैं। नमस्ते जी।
1: नमस्ते सर जी। नमस्ते जी।
0: आवाज़ नहीं चुनती जनाब तुम दी।
1: नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते। ठीक ठाक राजीव बाजी?
1: हाँ जी हाँ जी ठीक ठाक सर जी। नमस्ते जी। नमस्ते।
0: हाँ जी ठीक ठाक ने राजीव बाजी ने?
1: हाँ जी हाँ जी सर जी ठीक ठाक। तुम जी या तुसा ठीक ठाक ने सर जी?
0: अच्छा बढ़िया जी। तुम्हारी आवाज़ बड़ी घट घट इंदे जी हुणे उन्ना कर दिया तो कौन देने गीत हुणना पसंद कर ले जनाब?
1: विजय कपूर दी आवाज़ जो गाना सुनाई गया शामिया।
0: किसेरी जी? किसेरी आवाज़ में?
1: विजय कपूर।
0: हाँ जी
1: विजय कपूर। विजय कपूर।
0: अच्छा विजय कपूर।
1: हाँ जी शामिया।
0: और विजय कपूर री आवाज़ में कौन देने गीत बोलू तो है?
1: सामिया। सामिया सर जी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा स्वामिया।
1: हाँ जी सर जी।
0: ठीक ठीक ठीक है जी। बड़ा प्यारा गीत है जरूर होना ले तो सुई गीत है ना जी।
1: सर जी धन्यवाद सर जी। नमस्कार सर जी।
0: धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा हूँ राउंड तो सो गए तुम अपना आर जे वेड़ी जो कि सचिन कपूर हाजिर है कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा लेकर रहता। जनाब बड़ा बड़ा स्वागत है तुम्हारा। बड़ा मोटा मोटा स्वागत है। तो चलिए आजकल ना गर्मी का दौर चल रहा है हालांकि बरसाला ले आ भी नहीं आ प्री मानसून यहाँ लगू करता कि शायद इन इर्द गिर्द या माड़ी मोटी बरखा इस किनारी तो इन्हें बुच्चू कर दी ने लेकिन बिच्छा बिच्छा बुच्चू भी कर दी ऐसा नहीं है कि ना ही बुच्चू करती। तो आजकल ये तो है कि खाना ना डाइजेस्ट बुच्चू करता सो गर्मी भी वजह था और जो इनकी पाचन क्रिया सो बड़ी कमजोरी ने पेगी है ना कुछ ऐसा महसूस जरूर बुच्चू करता बुना तो सो लेकिन जरूर दस लठेरे बारे फिलहाल कार्यक्रम जो लेकर चल दें अगले श्रोता सो की तुसो रूबरू कर बंदे हैं। नमस्ते जी।
2: नमस्कार भाई क्या हाल चाल है?
0: बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। कौन बोलते हैं और कड़ी थो बोलते हैं जनाब?
2: भाई ये अपने नरोने जमन लाल बोलते जी।
0: एक मिनट जी तुम आवाज बड़ी दूर छुंदे आ।
2: हेलो।
0: हाँ जी अभी बिल्कुल ठीक आए जी।
2: अच्छा अच्छा और भाई जी हाँ ठीक है बढ़िया।
0: बहुत बढ़िया जी तो है भले तो है बढ़िया ने।
2: बिल्कुल सर बहुत बढ़िया है ना बस पूरा मच्छर का काम।
0: अच्छा
2: पानी पौने आ ना बिल्कुल भी
0: पानी की बड़ी कमी है जी है ना जी। चलिए आप मौके फिर इधर से देखी तो है कौन बल्लू कर देन और कड़ी थो बल्लू कर देन जो किया है फेसबुक रे माध्यम थो भी बिल्कुल लाइव ने इस समय जुट रहे
2: हैं जी। नरवाने तो बल्लू चमन लाल।
0: अच्छा नरवाने तो चमन लाल जी,
2: जी, और जी
0: बहुत बढ़िया चमन जी। अक्सर तुम सो के किया सो हर टॉपिक पर चर्चा करने वा बड़ा मजा इंदा बड़ा आनंद इंदा तो है बड़े जागरूक इंदा पर्सन हिन इस कार्यक्रम रे खासकर कम्युनिटी रे तो हिन हिन और इस कार्यक्रम रे भी हिन।
2: देखो सर आप तुझे तो हम दस गई इंदा पानी रे कमी रे किले सिर्फ दरियां दा बड़ा पानी है लेकिन जड़ी इंदा कोली थी है ना।
0: जी जी जी जी क्या बात है।
2: कुल्ला पर कोई ध्यान दिच हुंदा बड़ा भारी पानी त्रोड़ दा गुंदा।
0: अच्छा क्या क्या रीजन रियो रकिंदे कोली कोली बदले गया कि मनो बदले गया ना
2: सर? पहले गल तो मनु बदली गए।
0: हाँ मनु बदली गए। चलो कोहली भी मनु है लेकिन मेरा बलने का तात्पर्य तो है समझ गया।
2: जो सर किसान खेती करता तो सिक्स किसान ना रहे सब तो जरूरत पानी।
0: पानी बहुत आवश्यक है।
2: जब सो किसान जागरूक होता कि यार मुझे पानी चाहिए तो कोहली लेगा कोहली फिर रिक्वायरमेंट करे करे तो पानी हायर करता।
0: हायर करता एग्जैक्टली।
2: हाँ जी अज कुल्ला पक्की बची रही कोहली लुप्त बची रहा नवा यूथ खेतियां काम ना करना चाहता। मैक्सिमम जहां भी छुट्टी इंदा घर आता मिंजो अपने इलाके का खेत बिकुर हो जाता जैसे भी लगुरी हुई दिन।
0: अच्छा क्या बात है।
2: इस बारे भी जाना छुट्टी हम आ तो मैं कह रहा कि बहुत सारे लोग अपने लैंड बेची थी और तड़े आज जैसे भी लगुरी ने और हालात ऐसे ने कि जड़े थोड़े बहुत करने वाला है तीन पाने नहीं है।
0: पाने नहीं आहा बहुत बड़ी समस्या है बेशक मतलब जितने भी लक्ष्य होता है या जितने भी श्रोता सु फेसबुक के माध्यम तो मैं हुणो कर दे ले बाद अंदर बड़ी मेन मेन मतलब बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मतलब जमीना बिकी गई, मनु है कंक्रीट बनाई थे, कंस्ट्रक्शन रुकू ना कर दी, और जो खेती करने वाले ने सो करखन करके खज्जल ना पे, क्योंकि पानी नहीं छू करता।
2: बहुत सारी समस्या जो छोटे छोटे दलाल ने दलाल ऐसे तरीके रणनीति बनाते हैं कि सो दूसरे आदमी माइंड वॉश करके तो सी लैंड दे लो करते हैं। जो अखे बखे तो सब काम करने वाला खेती करने वाला किसान है सो मरे के छुंडा बचा सी रस्ता रिवरा ना तो सी पानी रिवरा है ना जी। अज भी सरकारी तरीके की पंचायती कोरम थो मैं अजय मुद्दा रख रहा थो, लेकिन पंचायती नवे प्रधान नवे वार्डपंच जी बोलो ठीक अगले कोरमा जाचते हैं।
0: ये तो चलो तारीख पर तारीख बनते हैं ना, ये तो
2: हाँ जी
0: सिस्टम ही पूरा हिल रहा है, एक खास नरवाने री गल नहीं है, ये
2: हाँ जी
0: पूरे
2: तो
0: हिंदुस्तान में ये चल रहा है भाई।
2: लोग का है जागरूक करूं कि नुआ यू था तुम्हें जागरूक चलो मुंडे से सोगी चला खुद ले चल ना इन खुद ले कर कुछ कर दे ताकि अपनी फार्म भी कर दे।

0: मेरे मुद्दा की जियां ले जमीना नहीं जिया प्यारा ना बोलना चाहिए जियां ले जमीना हैं जो बाय सकते हैं जो खेती बाड़ी कर सकते हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: प्यारा
1: जी,
0: बोलना
1: जिन्या
0: चाहिए।
1: वाले जमीना नहीं ना तिया तो राशन दिया बेशक ज्यादा दिया, पर जिया वाले ऑलरेडी जमीन हा कोई जमीन बहु अर्दा तो तस्सी राशन बिल्कुल मत दिया ताकि सब अपनी जमीना कर सका। लेकिन सरकार दे मनशा खतरनाक कर राशन तस्सी चुने दस ले जमीन हा कह के ना बल्ला तो बंजर बंजर बिकले बड़े लोग जेडे अपना होटल बना लिया कोई पैलेस बना लिया तो प्यारा काम चल रहा।
0: काम चल रहा बिल्कुल
1: नीति सर जेडे ना बड़े दूर तक सोचते हैं बड़े दूर तक बंदे तक आम आदमी आम जनता सोच नहीं सकती।
0: मैं सोच सकते बिल्कुल
1: आज
0: बिल्कुल
1: तो धर्मशाला नड्डी दाड़ी पूरा बिकी को नरवाने रे बारे नरवाना भी अद्धा बिकी को थोड़ा ना बचूगा। बड़ी अच्छी गल तो है कि फॉरेस्ट रास्ता इं का कोई फॉरेस्ट अंदर एक बंदा घर बना लिया था लोग ढाणा चली जाते लेकिन फॉरेस्ट में रस्ते परमिशन मिल जाते हैं
0: हाँ
1: और रास्ता बनने बाद जमीन बिकी जाती है बड़े आसानी से।
0: वाकई माए बड़ा
1: इन्हें वाला टाइम मंदिर है जरा 4-5 साल मन जी तो सही रहे कि अनाज जे ना बड़ा बड़ा महंगा कुछ खाना अनाज गरीब आदमी बेचारे मुलना ही नहीं आ कहीं की खेती आज की डेटा इंडे सोशल नुमाने दे मन को दान खेती ना करे या खिली पाई थी बल्लू जी कणक करने पर दान ना करनी सूरा री उजाड़ा या पानी नहीं आ या कई समस्या खड़ी करी थी बाल धनी ने वो नहीं सह नहीं मतलब हजारों बहाने ने
0: बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। और ये
1: जी।
0: बहाने एक किस्म थों ताम इनका जो कि दूस किनारी की सो फैसिलिटी मोड़ो कर दिया
1: हाँ जी सब तो बड़ी आ डीपू डिफेंस आ सब तो बड़ा डीपू आ उतनिया बाद ये है कि छोटे छोटे दलाल बिच भर इंजा भड़काऊ रहा है कि वे ठीक है तुम्हारा मुस्तरी का खाता है तुम्हारा जुड़ा वो ज्वाइंट 5 रुपए की बाय ने सारा का बगड़े आ ठीक है कराइंदा है कोई गल ना ठीक है मुंह मंगवा रेट मोड़ वरता कोई दिक्कत नहीं है
0: ये भी एक
1: दस
0: मोटा
1: जगह
0: मोटा
1: छोटे दलाल जेडे इंदे ग्रां रे कम्युनिटी छोटे छोटे दलाल ने सो बहुत बड़े दिमक ने इस सिस्टम बस्ती और ऐसा वजह सब कुछ चलेगा खुला खत्म हो जाएगी जिया कोठी कुल अंदर अंडर कुल सैमला मतलब सेंट्रली बुंदे या सार्वजनिक कुछ जगह बुंदे सभी बड़े कोठे कुल अपने अंदर करी ली पानी रोका बंदी करी थोड़ी कचरा फेंक कुंदे कुल मुंजे। हाँ जी
0: बहुत सारी समस्या है बहुत
1: हाँ
0: सारी।
1: और ये समस्या है खुद इंसान पैदा करने ते पहले ने कॉलोनी ना कॉलोनी शब्द ना कॉलोनी बनी जाए कॉलोनी शब्द कॉलोनी अगर किसी शहर में होती है दिल्ली बॉम्बे नगर अंदर चंडीगढ़ में होती है कॉलोनी होती है अब तो अपने इलाके कॉलोनी होने लिया है ना हर जगह कॉलोनी
0: तो है डेवलपमेंट समझी कि क्या समझी
1: सर बिना समझा तो है
0: विनाश।
1: जो गरीब आदमी आज तेरी जमीन पे कि कभी उठ नहीं सकता जीवन भर न उठ सकता 10,000 की सैलरी में आपके बच्चे नहीं पलेंगे ठीक
0: एग्जैक्टली
1: है ना। और यही लोग जहाँ बीमार होते थे फेसबुक का मैसेज पाएंगे जी ये गरीब परिवार है दान करा जी सारी किडनी खराब हो जाएगी सारा लीवर खराब हो जाएगा सारा वो बजेगा सारा सेब बजेगा कौन दान कर ला जरा मेहनत करता 100 रुपया डोनेशन करता रहा हर तरीके देना कोई फेसबुक के अंदर मैसेज चलूगा बंदा हर तरीके देना सोशल मीडिया अंदर कोई ना कोई गद्दी कम्युनिटी का मैसेज चलूगा या भी इसी पाए दे उसी पाए दे इसी पाए दिया। और जो जनरली प्रॉब्लम वाला इंसान है तो हरेक चंदा बेचारा जैसे वास्तव अंदर जमीन भी नहीं आ बच्चा भी है गरीबी भी आ बीमारी भी आ सो बेचारा पिछड़े चुंदा ये बिल्कुल बिना शाइनिंग वाले टाइम अंदर है 4-5 साल अंदर है जब फसल ना बोनी सर तो ये जाता कोविड कोविड अंदर इंसान बाल ना कटाया कपड़े ना धोया सब कुछ करो लेकिन अनाज जरूर खाओ
0: अनाज जरूर खाओ
1: ऐसे बिना अनाज ना जी सकते इन्हें वाले टाइम अंदर अनाज की वैल्यू दुनिया भर की पुज गई
0: बहुत ज्यादा।
1: और अब अह छोटे फार्मर अपनी खेती करते अपना गुजारा करते फिर दूजे क्विंटल अखे पक्के बेची तो दूजे घर चले पे
0: एग्जैक्टली
1: अस उन्हें खेती करनी तो अस अपना ढेड़ ना भरना लोग करके भरना फिर
0: क्या भरना
1: है ना जी। ये गल है बड़ी बड़ी समस्या है लोग का खेती करना चाहिए अपनी ये ना क्या करते उजागर हुआ कुंडा व्यवस्था करा आपू आपू पहले जनता रे आवाज बोलिए बुलाने सब कुछ बजाना
0: जनता भी आवाज बुलंद बुना किया सो बड़ा जरूरी है जरा बहुत आवश्यक है बहुत ज्यादा
1: कई के जहाँ आया जागरूक बुला माओ पानी तरस ला दो ही बंदे और बुला कोली बल्ला गल सब राली मेरे काम कर ले पानी गिला तो शायद कुछ बुझ सकता
0: पर बट ये जो पीड़ा है मुझे लगता है ग्रां रहे तुस वही है जो नौजवान हैं तीनों के ऐसा चुकना पैने पहले ताई की ऐसा कार्रवाई हगू बढ़ सकते हैं।
1: सर नौजवान के हालात ऐसे ना क्या इन्हें करे रोंदर की लोग खेती ना करे कुछ तो सक्षम चलो ठीक है तीन ना करे तिहा नौकरी पैसा या चलो सैटल ना लेकिन जो नॉन सैटल तीन छड़ी थी
0: ये तो बड़ी दिक्कत है ना फिर तो
1: उठने पर आखी शब्द मुलता बोलते उजाड़ यार आवारा गोरू ने पानी आए नहीं बल्द आए ना कत्ते करनी पहले लोग करते करते पहले तो सुख जाना थी बाल तो पाल दे ही ना।

0: किसान खेती करते ही है, अपना गुजारा करते ही, ताँ जी लोग के जमीन संभाल रखो ना,
1: जी
0: बेचना तो
1: एग्जैक्टली
0: बड़े आसान है, बहुत ईजी है, छोटे छोटे दलाल हंड जो मर्जी दी दिया, खुला पैसा मिलेगा ना
1: हाँ जी
0: जी। बड़े सारे समस्या रहा विषय आने वाले टाइम अंदर है, 54 साल अंदर है, पर अब पब्लिक उजागर बताए बोल सकता, सरकार तो
1: चलिए
0: कुछ ना कर सकती।
1: चलिए जी, इन दा काम कि इस टूल रे माध्यम तो है कि ऐसो पब्लिक जो जागरूक करना चाहिए तो फिर जुड़ देना सोगे कनेक्शन लेंदे इनते हैं, मतलब जितने भी श्रोता सोगे जुड़े बंदे ने इन दा इन दी कोशिश रन दे कि अहमनु जो कि ऐसो जागरूक कर, है ना जी। बाकी जागरूक
0: बिल्कुल
1: बुना ना
0: बिल्कुल
1: बुना सो मनु रहते हैं।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल सही गल सर, सही गल।
1: ठीक है जनाब, कुंदन गीत होना पसंद कर ले।
0: आज सर अगर गीत आना इधर सुनील राणा की आवाज जिंदर है, गुणे माता रब भजन है। ठीक
1: अच्छा चलिए ठीक है जी, जरूर होना ले।
0: है जी, ओके जी।
1: चलिए शोतो।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, नमस्कार
1: हेलो।
0: जी। रजनी
1: हाँ सर जी,
0: कौन
1: कैसे
0: बोल रहे
1: हो
0: हैं सर?
1: जी? मैं अनिल बोल रहा हूँ सर जी। बढ़िया
0: हाँ जी अनिल जी, क्या हाल चाल?
1: बढ़िया, एकदम स्वस्थ हो जी।
0: और कर रहे गुरन?
1: बस कुछ मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी आप बात करें, थोड़ा आगे बढ़ाया जाए।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो तो सोचते हैं सब बिल्कुल ठीक सोच दें जनाब।
1: जो अब बात आप कर रहे हैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, क्यों ना
0: बिल्कुल
1: कोई
0: बिल्कुल
1: बात करने से, चर्चा करने से कुछ निकल जाता है। तो
0: जी।
1: अभी एक बात मुद्दा चला हुआ खेती का,
0: हाँ
1: बड़ी सी बात
0: बिल्कुल,
1: है, बहुत अच्छी बात है। थोड़े
0: अकिंदे महोदय इन जो नरवाना थों
1: जी जी
0: बिलोंग कर
1: जी
0: दें
1: जी जी जी हाँ
0: तिया चर्चा छेड़ी थी कि अगर खेती करना के या सो आजकल थोड़ा करी मुश्किल है जो कि खेती वास्ते पानी की कमी। हाँ
1: नहीं, हाँ एक बात, ये पानी की भारी की भी है,
0: हाँ जी
1: कुल मान के पानी भी है। उसके बाद देखो ना जी, अब हमारी सरकार है, देख लो कि किसानों के लिए क्या कर रही है, कुछ भी नहीं। फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। अभी देखो ना, खेती बर्बाद होने का एक मेन कारण एक और भी है, इसके अलावा सबसे बड़ा कारण आजकल बंदरों का है। मैं आपको समझ रहा हूँ, हमारे एरिया में हम मक्की बेचते थे, और इतनी मक्की होती थी हमारे खेतों में कि बेसाब, ठीक है। और मक्की के अलावा जो फ्रूट था, फ्रूट जैसे माना कि आम था, बड़े बड़े आम आम लगे हुए थे। अभी भी इस टाइम में सब भी आम, लीची भी थी, फिर नाशपाती थी, है ना। फिर उसके बाद जैसे साइकिल के पेड़ थे, कुछ बड़ी उम्र था। फिर उसके बाद अपने सब्जियां थी, तो जैसे भिंडी वगैरह जो भी सब्जियां लगी थी, तो इससे बंदरों ने समझे बर्बाद कर दिया। अब क्यों लगाना है सोचो ना। अब अगर सरकार से कुछ कंट्रोल, पहले करें, एक बात चली थी कुछ वक्त पहले कि हम कुछ करेंगे, है ना, बंदरों को पकड़ पकड़ के वहां ले जाएंगे। किया कुछ नहीं किया, अभी सरकार की जो बेरुखी है ना, वो भी अभी आज ही वैसे में बात लगी थी कि जितने भी कोई मेरे साथ तीन महानुभाव से बात कर रहे थे कि जितने हमारे अधिकारी हैं वो भी कुछ भी करके राजी नहीं है। अब जो हमारे जो अधिकारी, जैसे डीसी महोदय ले लीजिएगा, या अपने जो कमीशन साहब ले, उन पे भी होता है ना कुछ, जो अधिकारी हैं वो भी जागरूक हो, उनमें अगर नव जागृति हो तो कुछ ना कुछ मतलब जन जन मतलब इसके नई नई ला सकते हैं। अभी कुछ भी नहीं ला सकते, तो बात ही कर रहे हैं, बात करने के लिए है, हम ये करेंगे वो करेंगे, होता कुछ भी नहीं है। धरातल पे तो कोई भी चीज उतरती ही नहीं है। जब तक तो चीज साबित नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा।
0: सही बात है।
1: अब माना कि एक छोटा विषय एक और है, हम बोलते हैं कि चिता या नशा ले लो, बच्चे नशे की ओर निकल रहे हैं। क्योंकि जब बच्चों को करने के लिए कोई कार्य होगा ही नहीं, हमारे देश की जितनी भी युवा शक्ति है वो सब बेकार जाएगी, यूं ही नदी नालों में घूमने फिरने के लिए। जब करने के लिए कोई रोजगार ही नहीं होगा, बच्चों को देंगे नहीं किसी को, होगा तो बच्चे क्या करेंगे? उल्टा आपको इसके नए नए कानून निकाल रहे हैं कि आप 1990 में, पीछे एक बार 1990 में मेरे याद है लॉटरी बंद हुई थी, लॉटरी बैन हुई थी। अब उसको फिर दोबारा लॉटरी का भूत दोबारा लेने वाला है ख्याल से। अगर ऐसा भूत निकलता है तो रत्ती कसर पूरी हो जाएगी, जितने भी हमारे युवा है वो लॉटरी शाल पर ही नजर आएंगे। तो हम ये कौन सा विकास कर रहे हैं? इससे कुछ समाज के लिए कोई इनकम तो होगी नहीं, उल्टा फिर उसको लॉटरी बैन करने के लिए फिर कोई नया कानून निकालेंगे। सोचो आप।
0: ये विषय तो सोचने वाला है जनाब।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पीछे एक दिन बात करी अपने शादियों में दारू परोसने की बात है, तो देखो कि शादी का पवित्र बंधन है, उसमें हम जो पंडित लोग हमारे होते हैं, तो शादी में पवित्र बंधन, उसमें भगवान का आह्वान किया जाता है। मालूम होगा आपको कि आहुतियां दी जाती हैं, है ना, भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, मतलब ब्रह्मा विष्णु को, हर मौसम उसको आह्वान किया जाता है कि यहाँ पधारिए, वो आते हैं। अगर आप इस शुभ अवसर पर कि मतलब दारू परोसने का काम करोगे तो आहुतियों कहा कि आहुतियां होगी। फिर एक और बात सोचिए ना कि हम आहुतियां दे रहे हैं, मतलब पवित्र कार्य कर, शुभ कार्य कर रहे हैं,
0: जी जनाब,
1: शुभ
0: जी
1: कार्य में हम अशुभ चीजें ला रहे हैं,
0: जी
1: उसमें मीट भी परोसेंगे तो फिर बोलो अब पवित्र हो जाएंगी, वो शुभ नहीं रहेंगे ना, शुभ रहेंगे आप बताइए मुझे।
0: ना ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल ना जनाब,
1: बिल्कुल सही
0: बिल्कुल ना
1: है।
0: रहने।
1: तो फिर हम कहा कि कौन सा विकास करते हैं जब हमारी सोच गर्त में जा रही है, तो हम अगर हम हमारी सोच वो
0: चलिए,
1: पाश्चात्य या वेस्टर्न कल्चर की ओर भाग रहे हैं तो
0: बिल्कुल
1: हम मतलब सनातन नहीं बचा सकते कभी भी, हम
0: बिल्कुल
1: सनातन बचा ही नहीं सकते कभी भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अनिल जी, दुर्गा ले कि बड़ा अहम मुद्दे पर तो है गल करे हा, लेकिन अगर जो तो है गल करे हा कि शादी विवाह रे, बड़ी सही और सटीक गल है। लेकिन आजकल डेट में अगर है शादी विवाह अंदर अगर इस प्रकार हो गया है ना, चलते हिन या जिया तो बलुगर्दन की शराब का सेवन ना बुना चिंदा आख सुख प्रतिशत अगर है सोचे गच्छ है दुए साइडा तो आख सुख प्रतिशत उनके गल के सो बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर ही लोक लज्जाताएँ या फिर बहुत
1: आपका
0: सारे
1: आपका
0: ऐसे
1: कहने का आपका कहने का जो तात्पर्य है
0: जो समाज का जो सम
1: वो मैं भली प्रकार से समझ गया हूँ कि
0: हाँ
1: आपका कहने का तात्पर्य यह है कि हम मतलब समाज के लिए भी कुछ ऐसी चीजें करते हैं।
0: समाज
1: ठीक
0: री
1: है
0: ए
1: ठीक
0: वडम्बना,
1: है,
0: हाँ कि
1: मतलब
0: अगर
1: उस हमारी विडम्बना कि उसको दाने लोगों को दिखाने के लिए या हम अपना रुतबा दिखाने के लिए कि दारू परोस रहे हैं। देखो
0: हाँ
1: हमारी
0: बिल्कुल। और
1: सोच
0: ये
1: ऐसी होनी
0: समाज
1: चाहिए
0: री
1: कि सर
0: विडम्बना, अनिल जी ये बड़ा
1: हाँ
0: अच्छा टॉपिक पर चर्चा हुआ। और इस
1: देखो
0: समाज
1: मैं
0: री
1: बात
0: बड़ी
1: जी
0: विडम्बना हा कि अगर तो है बैग आर्जा अंदर अगर तो है मतलब
1: नहीं
0: शराब ना
1: परोसते हैं
0: परोसी
1: तो
0: तो
1: कुछ भी
0: मतलब ये
1: ना,
0: बल दे मनु कि यार यारे घरे तो कुछ थोए
1: मजा नहीं
0: ना।
1: आया, मजा नहीं आया,
0: हाँ मजा नहीं आया, मजा ना
1: मजा
0: आया,
1: नहीं।
0: यारे घरे तो कुछ
1: देखो
0: थोए ना।
1: देखो सर जी मैं बताता हूँ
0: या ए
1: जैसे जी
0: दुई गल अनिल जी कि यारे
1: जी
0: घरे कुछ ना थो, और यारे घरे के गाना यार, यारे घरे तो ही है डिल्ला है प्रोग्राम।
1: वो मजा नहीं आया,
0: हाँ मजा नहीं आया,
1: कुछ भी नहीं, ऐसे बेकार था।
0: कुछ भी नहीं है ये, हर प्रकार रे हर मनो रे की सो इस समय सोच बन रहे।
1: मैं
0: हाँ
1: यहाँ भी बात लोगों से बात करता हूँ ना कि लड़की का बाप भले सारी उम्र की कमाई लगा देगा,
0: लगा
1: लड़की
0: देगा
1: का बाप पूरी सारी उम्र की कमाई लगा दे, लोन कर्जा लेके धाम अच्छी सी बना दे, लोगों की सेवा कर दे, पर अगर दो दो पैग लोगों को नहीं लगे ना, धक्के नहीं लगे ना, गिरे नहीं दो चार, तो लोगों को मजा नहीं आएगा।
0: बेशक
1: हमारी
0: तुंदी,
1: सोच यहाँ तक हमारी सोच गिर चुकी है।
0: हाँ बेशक तुंदी धाम अनिल जी, देसी घ्यूआ ततिया तुड़का लगूरा बुला,
1: मैं बोलता हूँ
0: सो
1: पूछो
0: सो
1: पूरे
0: मायने ना रख दे,
1: पूरे
0: सो मायने ना रख
1: मतलब
0: दे,
1: दारू
0: डजंट
1: से
0: मैटर।
1: दारू के दो पैकेट है ना, तो
0: हाँ
1: बल्ले बल्ले बढ़िया,
0: बस बल्ले
1: मजा
0: बल्ले,
1: बल्ले
0: ता
1: बल्ले हो
0: बड़ी
1: गई।
0: बड़ी अच्छी सोच लगी मुझे तेरे, आओ माफ कर तुंदी इस सोचा पर किया, स्वाम भी बड़ा मतलब चंद आ गया है भी इस प्रकार सोसाइटी की असो डिजाइन करने, इस प्रकार री सोसाइटी वह है भी चांद की बुआ है ना, जो कि चलो अकद मतलब कि बह अंदर इस प्रकार होगी दारू पियाना, मतलब समाज अग खुलेआम
1: मतलब
0: चुनौती
1: वर्जित
0: जिच्चो
1: वर्जित
0: करता
1: होती
0: नशे
1: है,
0: जो फिर यह है बलुगर्दन की
1: बड़ा बड़ा
0: इंद,
1: फिर बढ़ावा दे रहे हैं।
0: हाँ बढ़ावा दे चुकर देना, और फिर यह है बलुगर्दन की इंद है जो बच्चे हिंसो नशा ना करन तसो के ना करन सो
1: क्यों नहीं
0: तेरे
1: करेंगे,
0: बर्दन की बै
1: क्यों नहीं
0: जने
1: करेंगे,
0: लगदा देने खुलेआम किया सो शराब चल
1: जब
0: रही।
1: खुद तुम और तो क्या मोड़ लिखे मैंने कि कार्ड पे वो टिकट लगा देंगे,
0: हाँ बिल्कुल
1: कार्ड कॉकटेल
0: जी
1: है ना, तो नेचुरली उस कॉकटेल में चिकन भी होगा, मतलब पवित्र नहीं रहा कुछ भी। तो
0: पर ब्यार ब्यारा जो बंदना सो
1: ये
0: बड़ा पवित्र बंदा, और तुंदा ये मानना मानना और तुंदा ये बलना कि बैगार जंदर की असो शराब बीट मच्छी अंडा की असो कुछ ना बोना चिंता।
1: देखो पुराने वक्त थे तो हमारे मतलब अच्छे थे, उनको मतलब लोकगीत गाते हर चीज होती थी। अब लोग कहाँ है, लोकगीत सुने अपने, लोकगीत कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल किसी कल्चर में लोकगीत रहे ही नहीं है, नहीं तो हमारी और भी हमारे जो बुजुर्ग ऐसे जो गीत गाया करती थी है ना, शादी के अलग अलग गीत होते हैं ना, फिर लगन में अलग गीत हुए, फलाना अलग गीत हुए। अब वो तो डीजे डीजे है, डीजे डीजे से लोग पागल ही पागल हो गए, बस पता नहीं क्या
0: चलो
1: है।

0: चलिए
1: तो
0: अनिल जी,
1: मूवी
0: बहुत
1: तेरे पसंद
0: अच्छा।
1: है ना,
0: जी
1: तो
0: जी जी जी
1: मैं समझता हूँ कि सिर्फ चर्चा आपके जो आपके मंच पे कभी आप डिपार्टमेंट उस विभाग में कीजिए कि ऐसा, और
0: हेलो।
1: बोले इस पे तो हमें अच्छा लगेगा, और ये
0: चलिए
1: चीज
0: अनिल
1: अगर
0: जी,
1: हम
0: इस मंच
1: इस
0: पर
1: चीज
0: जो
1: को
0: भी
1: नहीं
0: ला ना,
1: बढ़ाएंगे।
0: आप तुसु एक क्लियर कट आप जो बोली नो, इस मंच पर जो भी ला सामने है, फोन रुक रो बुंदा, लाइव इस समय कार्यक्रम इंदा चल रो बुंदा हा, ये कार्यक्रम
1: सही,
0: बिल्कुल लाइव बुंदा। इस मंच पर जो भी ला, बड़े तो बड़ा नेता भी ला, तिन्या भी ये बोलना कि हाँ ये गलत हो तुम दे ठीक है, लेकिन सो आक अकेला नेता भी किया, सो पूरी सोसाइटी जो चेंज थोड़ी ना कर सकता है ना। लेकिन चलो इंदा प्रयास आए क्या है, इस प्रकार या कि सोसाइटी की सोचांत हीन का जो कि विवाह की सो पवित्र बंधन हा, बंधन हा, और इस पवित्र बंधन जो कि ऐसा है चंद दिन की थी, अंदर शराब मीट मच्छी अंडा इस प्रकार री नॉन वेज चीज जाना भून का जो कि अगर बुंदिन तय अपवित्र की सो बुझे गंदा है ना अनिल जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही
0: चलिए
1: लग
0: तुम
1: रही
0: द पॉइंट की सो मैं
1: है। ठीक
0: रिपीट भी करी देता हा, और अपने
1: है
0: बहुत
1: ठीक
0: सारे श्रोता जो भी दसीता अनिल जी, बहुत अच्छी टॉक भोई तुस होगी, तुम दाऊ सचिन कपूर तहे दिल थो धन्यवाद करनो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका।
0: धन्यवाद अनिल
1: जी
0: जी।
1: जी जी
0: तो श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर है वेड़ी गुंजन धर्मशाला हा, और आऊँ तुम अपना आरचे वेड़ी जो कि सचिन कपूर टॉपिक जो थो ये बड़ा मतलब इस पर कमेंट आऊँ जरूर चांदा श्रोताओं, जड़ी जड़ी भी ये लाइव कार्यक्रम और इस कार्यक्रम रे जड़ी जड़ी भी ये वाली क्लिप्स पूछ दी हिन ततिया आऊँ कमेंट किया, सो जरूर चांदा हा कि वाकई में के बैक अर्जंतर किया सो शराब ना बुना चिंदी कहो जो किया के पवित्र बंधन हा है ना, जिन किया है घर कीर्तन करंदे हिन है ना, तति अंदर बिना बुंदे है ना। तो ये अनिल जी रा के छोटा दे पॉइंट थो कि बैक आर अंदर के सो शराब मीट मच्छी अंडा इस प्रकार री चीज जगह ना सो ना भूना चिंदी का जो कि बैक पवित्र बंधन है, और ये चीज ये करी करिया है इन जो अपवित्र किया सो बनाओ कर देन, ये अनिल जी रा पॉइंट है। हाँ तुझे थो कमेंट रे माध्यम थो जरूर जानना चाहता हा जी कि क्या तुम दे राय हा। बहरहाल कार्यक्रम जो हागु बढ़न तो सब बन रहे इस समय आर जे सचिन कपूर सोगे वेड़ी गुंजन री गुंज सोगे, लेकिन चल दे तू सभी जो श्रोताओं अगली जान का माफ करा अगले की तारीख भजनारी के नारी।

শত এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হে সব টিউন কর রো কার্যক্রম ইস ওয়াক্ত হিন্দি আপনি গপা চল রহি না তা আইয়ে জি কার্যক্রম জো থোড়া করে ওর হাগু আসু জরুর বড়ানা হ্যাঁ और शोधों गल करने हैं गर्मी में पाचन क्रिया किया सो कोई पैगन दे है कमजोर तेरे बारे किया सो तुस हो गया सो जरूर गल करने है शोधों और अपने फेसबुक के माध्यम तो भी किया सो अपने श्रोता तक ये गल जरूर पहुँचाने सो है ना जी इनकी कोशिश की सो जरूर रन दे हर रोज रन दे हा और बार बार रन दे कि इतने इनके जितने भी इस गादे कार्यक्रम हो गए इनके श्रोता जुड़ते हैं जो इस जो इनकी गदयाली बोली जो कि असो पसंद करते हैं है ना जो इस कार्यक्रम जो पसंद करते हैं तिया तक भी इनकी गलबात की असो जरूर पूजा और पूछते रहे तो मजा इनका है ना तो गर्मी में पाचन क्रिया की है शोतों जो करखा न करखा कमजोर पै गए है सब बाखूबी किया सो जानते हैं गर्मी में अक्सर किया सो मनु बीमार भुच गए हैं शोतों जून जुलाई रे महीने वाली ये गर्मी किया सो मनु जो परेशान कर देंदे हा इस मौसम में मनु किया सो मनु पाचन संबंधी समस्या है ना सो बड़ी गंदी मनु मंच है ना असो सभी मंच किया सो पाचन संबंधी समस्याएं की है सो बड़ी गंदी हिन्न इस मौसम में पाचन क्रिया कमजोर भूना लगती है जत्थों एसिडिटी पेट फूलना गैस कब्ज और भूख ना लगना जैसी समस्या की है सो चली इंदी इन शोतों कई बार तो मनो इस गर्मी तो मतलब कई बार यह सोच दिन कि असू गर्मी बुझ गया रहा था गर्मी तो जोड़ी करके असो असू समझ नहीं इंदी है कि हा गया सिस्टम आयुर्वेद रे अनुसार आयुर्वेद रे अनुसार अगर हम गल करूँ श्रोता हूँ तो ठेरा मूल कारण शरीर री अग्नि हाँ पाचन अग्नि तो ये जुड़ते हा है ना जो शरीर री अग्नि और पाचन अग्नि तो ये जुड़ते हा आयुर्वेद विशेषज्ञ दसते हैं कि ज़्यादा गर्मी डिहाइड्रेशन और स्टूडियो में लाइट चली गया तो ज़्यादा गर्मी तो किया श्रोता हूँ सो चीज़ अगेन खराब बुच गंदी है ना डिहाइड्रेशन बुच गंदी है गर्मी में गर्मी तो लाइफ स्टाइल में के सो बदलाव पाचन क्रिया जो बुरी तरीके होगी प्रभावित कर सकता और शरीर खाने तो सही तरीके होगी कि सो असु यह खाना ना खाई सकते इन शो तो सही तरीके होगी कि सो असु खाना ना पचता है तो बहरहाल कार्यक्रम तो सब हूँ कर देना आर जे सचिन कपूर सो गए और हिंदी अपनी गप इस समय चल रही है तो फिलहाल लेके चलते तुस इस प्यारे दे ये तारीख नारी बने रहे तो सब जुड़ रहे हैं इस समय आर जे सचिन कपूर सो गए और ये जुड़े रहे ये बने रहे अपने आर जे सचिन कपूर सो गए गूंज अपने बन रहे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रहे।

नमस्कार दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के चमकते सितारों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं आपके अपने शहर कांगड़ा में। तो याद रखिएगा, 28 जून 2026 रविवार को सुबह ठीक 9 बजे से जीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा में ये भव्य शाइनिंग स्टार फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7710 77122 या फिर 7888891936। धन्यवाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों, समझियों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं, कुछ नहीं, पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई, गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो, ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
4: ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों
4: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
10: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
11: मोहित,

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी, और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। मैं आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर हूँ, कार्यक्रम में गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर हाजिर हुआ हूँ आप सभी के वीडियो सेट पर। तो ये कार्यक्रम 8 बजे तक चलेगा, बहुत सी जानकारियाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुँचाएँगे और साथ ही साथ श्रोताओं बहुत सी जानकारियाँ जो है वो भी आप तक ज़रूर पहुँचेंगी, वो भी हम आप तक साझा जो है वो ज़रूर करेंगे। तो बहरहाल सबसे पहले तो धर्मशाला में हम सभी ये जानने के लिए आतुर रहते हैं कि धर्मशाला का मौसम का क्या हाल है। श्रोताओं अगर बात की जाए तो इस समय धर्मशाला में 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो तापमान है। नमी की बात करूं श्रोताओं तो नमी जो है वो इस समय ह्यूमिडिटी जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है वो 85% जो है वो इस समय धर्मशाला में है। श्रोताओं ये कार्यक्रम शाम 8 बजे तक यूं ही चलता रहेगा, आप और हम यूं ही बनते रहेंगे, संवरते रहेंगे और प्यारे प्यारे से गीत आपको सुनाते रहेंगे, कुछ एक खास जानकारियों के साथ जो है वो भी अपने श्रोताओं को हम ज़रूर रूबरू करवाएंगे, श्रोताओं ज़रूर रूबरू करेंगे। तो कहते हैं इतना घमंड किस बात का है साहब, सांस किसी का इंतज़ार नहीं करती, या तो चलती है या फिर चली जाती है, है ना। यही होता ना, या तो सांस अभी चल रही है हमारी, है ना, तो चली तो रही है, मतलब चलती तो है सांस, चल रही है तभी ज़िंदगी भी चल रही है, या तो फिर इंतज़ार थोड़ी ना करती है, चली जाती है। और जब वैसे जाती है तो वो शख्स, वो घमंड, वो एटीट्यूड, वो अहंकार, फिर वो एक जगह हो जाता है, फिर वो सो जाता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि कभी घमंड मत कीजिए, कभी अहंकार मत कीजिए, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है इस दुनिया में श्रोताओं, कुछ भी आपके साथ नहीं जाने वाला है, ये सब मोह माया है और ये सब यहीं पर रहने वाला है। चलिए जी, तो आगाज कर लेते हैं हम कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ, और गीत के बाद श्रोताओं अन्य जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। आइए लेके चलते हैं इस गीत की ओर। ये बहुत प्यारा सा गीत है, इस गीत को सुनते हैं अखियों के झरोकों से।

आयशा, तो इस खूबसूरत से गीत का आनंद हम सभी लेते हैं। कुछ एक टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा गाना जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया। आइए लेते हैं इस प्यारे से गीत का आनंद आप सभी के रेडियो सेट पर।

क्या बात है शोतो, बहुत प्यारा सा गीत हम सभी ने सुना है ना जी। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम गुड गुड गुड इवनिंग धर्मशाला में। चलिए कहते हैं हर चीज़ जो है वो बेहतरीन लगती है अगर आप बेहतरीन तरीके से उसे सोचते हैं, बेहतरीन तरीके से उसे समझते हैं, है ना। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है शो, तो हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करती है अंडरस्टैंडिंग हम सभी की जीवन में, हम सभी की जीवन गाथा में जो है वो अंडरस्टैंडिंग बहुत अहम रोल जो है वो करती है। तो ये अहम रोल ज़रूर बेहतरीन तभी बन सकता है जब हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और जो भी रिश्ते हैं वो एक दूसरे के साथ वो उस हिसाब से रहे, उस मैचिंग के हिसाब से रहें। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ एक जानकारियों के साथ जो है वो अब आपको रूबरू करवाते हैं श्रोताओं। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर अब आप कॉल करके मिड डे मील की शिकायत कर सकते हैं जी। बिल्कुल, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर करें मिड डे मील की शिकायत दर्ज। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील के दौरान जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं चलेगा। मिड डे मील योजना की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था भी मजबूत की गई है। श्रोतों, शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में टोल फ्री हेल्पलाइन 1800 1800 8007 प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करने के निर्देश जो हैं वो दिए हैं। श्रोतों, इस नंबर पर छात्र, अभिभावक या आम नागरिक मिड डे मील की गुणवत्ता, वितरण में गड़बड़ी या फिर भेदभाव से जुड़ी शिकायत दर्ज कर सकेगा। हेल्पलाइन प्रत्येक कार्य दिवस सुबह 10 बजे से

शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। चलिए श्रोताओं, आप सभी बने हुए इस समय वेड़ी गुंजन की उसी गूंज के साथ, उसी लहर के साथ। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, और फेसबुक के माध्यम से भी हम जो है वो अपनी लहर को, अपनी गूंज को जो है वो लोगों के घर घर तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं रोजाना कोशिश करते हैं। जी, आप सभी का प्यार, आप सभी का आशीर्वाद जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही अहम रोल जो है श्रोताओं वो निभाता है। आपका प्यार आशीर्वाद हमेशा सदैव हम पर यूं ही बना रहे। बने रहिए, जुड़े रहिएगा रेडी गुंजन की गूंज के साथ। और आइए लेके चलते हैं अब आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। आप सभी बने हुए हैं श्रोताओं हमारे साथ बिल्कुल, और कार्यक्रम में जो है श्रोताओं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक वो गीत ज़रूर पहुंचे। लेकिन चलिए लेके चलते हैं आप सभी को इस फेरे से गीत की ओर ज़रूर लेके जाएंगे श्रोताओं। आइए उससे पहले आपको, आप सभी को एक और जानकारी जो है वो आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं श्रोताओं। गर्मी में पाचन क्रिया क्यों पड़ जाती है श्रोताओं कमज़ोर, ये बड़ा मेन मुद्दा है और ये बड़ा अहम मुद्दा भी है कि गर्मी में पाचन क्रिया क्यों पड़ जाती है कमज़ोर। खाना सही से ना पचने पर क्या होता है श्रोताओं, रोज़मर्रा की कौन सी आदतें पाचन खराब करती हैं श्रोताओं, गर्मी से पाचन क्रिया कैसे प्रभावित होती है, इन बातों का कैसे ध्यान रखें, पाचन मजबूत करने के लिए क्या क्या करें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे श्रोताओं, लेकिन इस प्यारे से गीत के बाद।

श्रोताओं, कैसा लगा ये गीत आप सभी को? होप सो अच्छा लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा, है ना जी? जी बिल्कुल, अच्छा लगना भी चाहिए, बेहतरीन लगना भी चाहिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला FM बैंड 91.2 MHz पर। आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ वेड़ी, जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है जनाब, आप सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन है। आइए लेके चलते हैं आप सभी को कुछ एक और खास, ये जानकारी आपके, आप सभी के लिए, हम सभी के लिए ये जानकारी, है ना जी? क्योंकि गर्मियों का मौसम चला हुआ है श्रोतों, और इस गर्मी के मौसम में ना खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, इस बात से आप बिल्कुल सहमत होंगे, है ना? लूज मोशन लग रहे हैं, खाना डाइजेस्ट अच्छे से हो नहीं पा रहा है, पाचन क्रिया जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, वो कमज़ोर पड़ गई है। बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारी बातें हैं, ज़रूर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बता दें कि गर्मी में अक्सर जो है वो लोग बीमार पड़ते हैं श्रोताओं। जून जुलाई के महीने वाली गर्मी लोगों को परेशान करती है, वो वाकई में ही करती है श्रोताओं। इस मौसम में लोगों की पाचन संबंधी समस्याएं जो है वो बढ़ जाती हैं। इस मौसम में पाचन क्रिया कमज़ोर होने लगती है, जिससे एसिडिटी, पेट फूलना, गैस, कब्ज, भूख ना लगना जैसी अन्य समस्याएं जो है वो होने लगती है श्रोताओं। कई बार लोग इसे गर्मी से जोड़कर समझ नहीं पाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसका मूल कारण शरीर की अग्नि, पाचन अग्नि से जुड़ा है। आयुर्वेद विशेषज्ञ बताते हैं कि ज़्यादा गर्मी डिहाइड्रेशन और गर्मी में लाइफस्टाइल में जो है वो बदलाव पाचन क्रिया को बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, और शरीर खाने को सही तरीके से जो है वो नहीं पचा पाता है। गर्मी से पाचन क्रिया कैसे प्रभावित होती है श्रोताओं? रोज़मर्रा की कौन सी आदतें हैं जो पाचन खराब करती हैं श्रोताओं, है ना जी? पाचन मजबूत करने के लिए क्या करें? योग करें और क्या करें, है ना? आयुर्वेद पाचन संतुलन बनाए रखने के लिए योग, ध्यान और व्यायाम को महत्वपूर्ण मानता है श्रोताओं, और ये ज़रूरी भी है हम सभी के लिए। गर्मी में पानी की कमी हो जाती है श्रोताओं, है ना? अनहेल्दी खाना, खान पान की आदतें आंतों को प्रभावित करती हैं श्रोताओं। ख़ास तौर से जो है वो फास्ट फूड, तला हुआ खाना, ये सब, चाय, कॉफ़ी ज़्यादा पीना और अनियमित समय पर खाना खाने से जो है वो पाचन पर दबाव पड़ता है। इससे सुस्ती और थकावट महसूस होती है श्रोताओं। हालांकि आप पाचन को मजबूत बनाना और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए जो है वो कुछ उपाय भी कर सकते हैं, सुबह उठकर गर्म पानी, जैसे कि हम सभी को पता है। लेकिन चलिए और भी डिटेल में ये सारी बातें जो है वो आप तक हम ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे श्रोताओं। आप सभी बने हुए इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं आपके अपने RJ वेडियो, जो कि सचिन कपूर के साथ। सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा गीत।

देखिए ये तो हमें भी नहीं पता कि न जाने वो कैसी होगी या न जाने वो कैसा होगा। हमारे डायरेक्टर ने एक बात मुझे कही थी कि शादी का लड्डू जो है वो खाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। और वाकई में बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आपका एक डिसिप्लिन जो है वो आपको मिलता है सीखने को, है ना। लाइफ संतुलित किस प्रकार से होती है वो आपको सीखने को मिलता है। लाइफ में रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, किस तरह से बैलेंस किए जाते हैं, अमूमन वो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। बहरहाल मैं सचिन कपूर हूँ, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला को इस समय होस्ट कर रहा हूँ, आपका अपना नाचीज सचिन कपूर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गर्मी में पाचन क्रिया क्यों पड़ जाती है कमज़ोर, उसके बारे में हम श्रोताओं थोड़ी बहुत सी आपके साथ साझा कर रहे थे। देखिए गर्मी से पाचन क्रिया कैसे प्रभावित होती है। आयुर्वेद के अनुसार गर्मी का मौसम ऐसा होता है श्रोताओं जब पाचन क्रिया स्वाभाविक रूप से कमज़ोर हो जाती है। बार बार पसीना आना, है ना, नींद की कमी होना, तनाव होना, अनियमित खान पान की आदतें पेट और उसके कामकाज को प्रभावित कर सकती हैं श्रोताओं। नतीजा गर्मी के मौसम में पाचन तंत्र की कार्य क्षमता कम हो जाती है। खाना सही से ना पचने पर क्या होता है श्रोताओं, आयुर्वेद की माने तो खाना अगर सही से नहीं पचता तो उससे आव नामक एक पदार्थ बनता है श्रोताओं, विश्लेष पदार्थ जो है वो बनता है जो शरीर में जमा हो जाता है। इससे थकान, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, एसिडिटी होना, पाचन संबंधी परेशानी जितनी भी है वो हो सकती है श्रोताओं। शरीर के हर भाग में जो है वो अजीब सा फील होता है ना। पाचन के जरिए पोषक तत्व मिलते हैं हमें जो कि नहीं मिल पाते हैं, इसलिए पाचन कमज़ोर होने पर जो है वो पूरा स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और पूरा स्वास्थ्य जो है वो कुछ हिल डुल सा जाता है श्रोताओं। बहरहाल आप सभी ना हिले डुले, आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। दीवानों से पूछो मोहब्बत है क्या, बहुत प्यारा गीत है श्रोताओं, और मुझे लगता है आपने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं दीवानगी तो जरूर की होगी, मोहब्बत तो जरूर की होगी, इश्क तो जरूर किया होगा जी। आप सभी के लिए मेरी यानी कि सचिन कपूर की ओर से ये प्यारा सा गीत आप सभी को डेडिकेट है।

वाकई में ना शौतान दीवानों से पूछो ना कि मोहब्बत है क्या, जिन्होंने मोहब्बत की है, जो मोहब्बत में अक्सर रोए हैं, जो मोहब्बत में अक्सर हीर रांझा, हाँ हीर रांझा हीर रांझा जैसी मोहब्बत किसने की है आखिरकार, है ना। सुनी भूखू जैसी मोहब्बत किसने की है आखिरकार। वाकई में मोहब्बत के किस्से देखिए, ताजमहल जो है वो सबने देखा है, ताजमहल जो है वो सबने देखा है, मुमताज़ ने नहीं देखा। मोहब्बत के कुछ अधूरे किस्से हैं इस प्रकार के श्रोताओं, जिनको बयान करने में, जिनको बयां करने में शायद शायद शायद पूरी रात भी लग जाए। बहरहाल आप सभी बने हुए हैं आज से सचिन कपूर के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, आपके अपने आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर के साथ, कार्यक्रम का नाम है गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए जी, ये ना जो मोहब्बत वाली बात चलती है तो मोहब्बत में धोखा जो है वो भी ज़रूर मिलता है, बहुत सारे लोगों को मिला होगा, आप सभी में से जितने भी इस समय मुझे सुन रहे हैं, है ना, बहुत सारे को मोहब्बत में धोखा मिला होगा, बहुत सारे श्रोताओं का प्यार जो है वो सक्सेसफुल हो गया होगा, वो कामयाब हो गया होगा, है ना। और लेकिन जिनको धोखा मिला है वो क्या गाते हैं, ज़रा वो क्या गाते हैं सुनो। ये धुन आपने सुनी कि वो क्या गाते हैं, वो यही गाते हैं कि जीता था जिसके लिए मरता था, वो ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, पे आ जाते हैं फिर हम। चलिए तो एंजॉय करते हैं इस प्यारे से गीत को, आपके वीडियो सेट पर लेकर आएंगे अन्य जानकारियां।

तो सोचूं क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा लड़का या ऐसी लड़की है? ज़रूर होगी, है ना, और माफ़ करें, होनी भी चाहिए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सोचूं, और आज का हमारा टॉपिक है गर्मी में पाचन क्रिया को क्यों पड़ जाती है, गर्मी में जो है वो पाचन क्रिया क्यों पड़ जाती है कमज़ोर। और इसी के साथ हमारे पास अब जो जानकारियां वो भी आना जो है वो शुरू हो गई हैं श्रोताओं। पंचायत को और सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही प्रदेश सरकार, केवल सिंह पठानिया। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया की अध्यक्षता में आज हिम ऊर्जा के अधिकारियों के साथ ग्रीन पंचायत योजना की प्रगति को लेकर जो है वो एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। श्रोतो बैठक में योजना के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में स्थापित किए जा रहे और ऊर्जा संयंत्रों की प्रगति, उत्पादन तथा आगामी परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। उप मुख्य सचेतक ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार प्रत्येक पंचायत को सौर ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावित कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रीन पंचायत योजना के माध्यम से पंचायतों को स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा से जोड़ने के साथ साथ ई व्हीकल चार्जिंग अवसंरचना को भी जो है वो चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से पंचायत की आय में वृद्धि होगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर जो है वो बढ़ेंगे तथा प्रत्येक पंचायत आर्थिक रूप से जो है वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगी। तो चलिए श्रोतों, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की और कबूतर जा और कबूतर आ।

0: श्रोता एफ एम एंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। और अब वक्त हुआ है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचारों का।
1: क्षेत्रों की संस्कृति को इस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वह सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। मेरे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में MSME को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर की 50 का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे साथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, साथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महाराष्ट्र

0: चीफ चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामले में SIT जांच की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश पर मुंबई में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। बहरीन ने आज ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने देश पर ड्रोन से हमले किए। बहरीन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ईरान के कई ड्रोनों ने देश को निशाना बनाया, किसी के हताहत होने से पक्ष नहीं है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स IRGC ने कहा कि इसने अपने दक्षिणी तट पर अमरीकी हवाई हमलों के जवाब में अमरीकी सेना से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, न्यूज वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और प्रणव चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी।

नमस्कार दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के चमकते सितारों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं आपके अपने शहर कांगड़ा में। तो याद रखिएगा, 28 जून 2026 रविवार को सुबह ठीक 9 बजे से जीएबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा में ये भव्य शाइनिंग स्टार फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7710 7712 या फिर 7888 8819356। धन्यवाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आ गए।
1: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, आपके अपने आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर के साथ। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ एक और खास जानकारियों की और आप सभी को लेके जाते हैं। 15 किलोग्राम चरस और 27 ग्राम चिट्टा नष्ट। कांगड़ा पुलिस ने नशा निषेध दिवस पर जो है वो 73 मामलों में की कड़ी कार्रवाई। जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध एवं अवैध तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर जो है वो जिला कांगड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए NDPS अधिनियम के 73 मामलों में जब्त मादक पदार्थों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया। जिला के 15 नशा प्रभावित पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में नशा निवारण समितियों की बैठक आयोजित कर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। राज्य सरकार के जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत गगल थाना क्षेत्र के डुगियारी स्थित सुरक्षा बायो सैनिटाइजर में जब्त मादक पदार्थों का निस्तरण किया गया। शतों नष्ट किए गए मादक पदार्थों में 15.974 किलोग्राम चरस, 27.66 ग्राम चिट्टा, 3.344 किलोग्राम भुक्की, 907 नशीले गोलियां और 176 अफीम के पौधे शामिल रहे। शतों गगल पुलिस थाना में SV कांगड़ा कुलभूषण वर्मा, नगर निगम धर्मशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय वजेंद्र कुमार, MC पालमपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिटी वीर बहादुर सिंह कांगड़ा में, उपमंडल पुलिस अधिकारी मनोज कुमार नगरोटा भगवा में, DSP निशा कुमारी बैजनाथ योल फतेहपुर रक्कड़ जोगीपुर घुरकड़ी दाड़ी और खनियारे में नशे निवारण समितियों की बैठक आयोजित की गई। शोधों इनमें पुलिस जो है वो अपना बखूबी रोल जो है वो निभा ही रही है। शोधों जैसे कि हम सभी देख पा रहे हैं। बयान लेके चलते हैं आप सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को इन प्यारे प्यारे गीतों की ओर। आप सभी बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ यूं ही।

चलिए बताइए फिर, आप में से कौन कौन है बाजीगर? मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी के सभी बाजीगर जो हैं वो होते हैं और सही वाले होते हैं भाई साहब। चलिए लेके चलते हैं आप सभी को अब कुछ एक और जानकारी की ओर। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। तो टीएमसी में जो है वो टैंकों की सफाई हो रही है जनाब, बिल्कुल टंडा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में जो है श्रोताओं वो मटमैल व दूषित पानी आने के बाद शुक्रवार को जिला शक्ति विभाग ने तुरंत गंदे पानी की टैंकों को खाली कर दिया है। इसके बाद पानी को शुद्ध करने के लिए टैंकों में पानी को भरा जा रहा है ताकि टंडा अस्पताल परिसर के अंदर मरीजों के वार्ड, इमरजेंसी आईसीयू और कॉलोनी तथा कार्यालयों में शुद्ध पानी की सप्लाई सुचारू रूप से मिल सके। विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने सभी टैंकों के गंदे पानी को निष्कर्षित किया और शुद्ध पानी को जो है वो सुचारू रूप से चला दिया। श्रोतों बता दें कि अभी निरंतर बरसात भी शुरू नहीं हुई है और टैंकों में गंदा पानी भर गया था श्रोतों। तो एसडीओ अभिषेक भाटिया ने बताया कि सभी टैंकों को गंदे पानी को निष्कासित कर साफ व शुद्ध पानी को भरा जा रहा है श्रोतों, ताकि टंडा क्षेत्र के अंतर्गत शुद्ध पानी मिल सके, यही विभाग का प्रयास है। और मुझे लगता है आईपीएस डिपार्टमेंट का एक हमारी हेल्थ से भी जो जुड़ा है वो बहुत बड़ा रोल रहता है। वो बहुत बड़ा रोल इसलिए रहता है कि आप देखिए ना, पानी से हम जानते हैं कि कितने परसेंट बीमारियां जो है वो पानी से लगती हैं। 70-80% बीमारियां जो है वो पानी के कारण लगती हैं। अगर आईपीएस डिपार्टमेंट अपना काम जो है वो इसी तरह से प्रयास करता रहे, अपने काम में इसी तरह से जो है वो जागरूकता लाता रहे और सेफ्टी टैंक जो है वो इसी तरह से पानी वाले सेफ्टी टैंक जो है वो इसी तरह से साफ होते रहें, तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो है वो अच्छी हो जाएंगी, बैलेंस हो

जाएंगी। बहरहाल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर।

चलिए श्रोतो, आप सभी बने हुए समय FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम चल रहा है इस समय गुड इवनिंग धर्मशाला। तो आइए कार्यक्रम को लेके चलते हैं, थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। और अब वक्त हो गया है रेडियो गुंजन धर्मशाला में श्रोतो एक छोटे से अंतराल का, और वापस मिलते हैं, मुलाकात करते हैं आप सभी से इस छोटे से अंतराल के बाद। जी बिल्कुल, इस अंतराल के बाद हम आपसे रूबरू होते हैं और अन्य जानकारी के साथ भी आपको रूबरू करवाएंगे।

नमस्कार दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के चमकते सितारों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं आपके अपने शहर कांगड़ा में। तो याद रखिएगा, 28 जून 2026 रविवार को सुबह ठीक 9 बजे से जीएबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा में ये भव्य शाइनिंग स्टार फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7710 7712 या फिर 7888 8819356। धन्यवाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आ गए? बैठो।
1: मॉर्निंग मैम।
0: हाँ, तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा मैम, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों, समझियो के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका, दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर, कोई बात नहीं
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं, कुछ नहीं, पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ, हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई, गहने, गाड़ी, 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो, ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है, कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र,
4: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों
4: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
6: मेरा
4: कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर?
6: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
10: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
11: मोहित, मेरा इस्तीफा।
12: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
11: सॉरी यार,
12: काम कीजिए आप लोग।
10: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला था।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए गुड इवनिंग धर्मशाला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, लो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के उपाय क्या हैं? ब्लड प्रेशर या फिर हाइपोटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके शरीर का ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल यानी कि 120-80 रहना चाहिए, है ना, से काफ़ी कम हो जाता है। रहना नहीं चाहिए, इससे 120-80 से काफ़ी कम हो जाता है। जब शरीर में बीपी अचानक कम हो जाता है तो इसकी वजह से आपको चक्कर आने लगते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, कमज़ोरी महसूस होने लगती है या फिर कई बार जो है वो घबराहट और बेहोशी जैसे लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। अगर आपका या फिर आपके किसी करीबी के साथ अचानक ऐसा हो जाए तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही कुछ आसान और आरामदायक उपाय अपनाकर अपने लो ब्लड प्रेशर को तुरंत कंट्रोल में कर सकते हैं। नमक और पानी का घोल सेवन करें। अगर बीपी अचानक कम हो जाए तो इसे कंट्रोल करने का सबसे पहला और इंटरेस्टिंग उपाय है नमक का पानी। जी बिल्कुल, नमक का पानी लो। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक गिलास पानी का पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर धीरे धीरे पिए। इस बात का ख्याल रखें कि नमक का पानी केवल इमरजेंसी कंडीशन में ही ले सकते हो, है ना। और अगर व्यक्ति को पहले से ही दिल या किडनी की कोई बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह के बिना ज़्यादा नमक ना दे सकते हो। सबसे आसान तरीका है तुरंत कॉफ़ी या चाय पिलाना। अगर आपका या फिर आपके घर पर किसी का भी बीपी अचानक ही बहुत कम हो जाता है या हो गया है तो व्यक्ति को तेज चक्कर जो है वो व्यक्ति को आ गया है तो तुरंत जो है वो श्रोताओं कैफीन का सेवन एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। जिसका ब्लड प्रेशर लो और उसे एक कप कड़क ब्लैक कॉफ़ी या कड़क चाय

0: आईपीएल आए और कैफीन दिल की धड़कन को थोड़ा फास्ट कर देता है शतों और ब्लड बैलेंस को जो है वो बिल्कुल बैलेंस कर देता है। पैरों को ऊपर उठाकर लेटाएं शतों, अगर बीपी लो होने के कारण व्यक्ति को चक्कर आ रहे हैं या बेहोश होने की कंडीशन में है तो बैठना या खड़े रहने की बजाय उसे तुरंत सीधे लेटा देना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले व्यक्ति को पीठ के बल सीधा लेटा दें और पैरों के नीचे 2-3 तकिए लगा के ताकि व्यक्ति को पैर सिर के लेवल, व्यक्ति का पैर और सिर के लेवल के ऊपर हो जाए। शोतों व्यक्ति का पैर जो है वो सिर के लेवल से थोड़ा ऊंचा हो जाए। ऐसे करने से पैरों की तरफ बहने वाला खून तुरंत दिमाग और दिल की तरफ जो है वो पहुंचने लगता है जिससे चक्कर आना बंद हो जाते हैं और मरीज को राहत मिलती है। कुछ मीठा या किशमिश खाएं शोतों, है ना। आयुर्वेद में किशमिश कोले बीपी के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। अचानक बीपी गिरने पर आप जो है वो शोतों एक मुट्ठी छोटी सी चुटकी भरी जो है वो किशमिश चबाकर खा सकते हैं या फिर चॉकलेट या कुछ इस प्रकार का मीठे का सेवन जो है वो ज़रूर करें। बहरहाल आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला पिटारा यूं ही चलता रहेगा। श्रोतों अब वक्त हो गया है 7:45 और रेडियो गुंजन धर्मशाला में अब वक्त है प्रादेशिक समाचारों का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप सुनिए प्रादेशिक समाचार। सुनिए आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने दुर्गम क्षेत्र बड़ा पहंगाल की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का किया ऐलान। 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर सेट लगाने की घोषणा। पोलियो रविवार के तहत कल प्रदेश में 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 6 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पल्स पोलियो की खुराक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का दावा, 70% पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान व उप प्रधान जीते चुनाव। राज्य सरकार पर जनादेश का अपमान करने का लगाया आरोप। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने 800 किलो चेरी व प्लम की निर्यात खेप को ओमान के लिए किया रवाना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में हमारे से बात करेंगे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के अति दुर्गम क्षेत्र बड़ा बंगाल की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत 1500 रुपए प्रतिमाह देने का ऐलान किया है। उन्होंने आज बड़ा बंगाल में लोगों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ा बंगाल में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर सेट लगाए जाएंगे और बच्चों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को बड़ा बंगाल को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगाए गए राजमाह पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करेगी। कल पोलियो रविवार है। प्रदेश भर में 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 5,94,000 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रबंध कर लिए हैं और राज्य में 4,700 से अधिक पोलियो बूथ बनाए गए हैं। सोलन जिला में कुल 83,836 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक ने बताया कि इस कार्य के लिए लगभग 2,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं।
2: जिला सोलन का टारगेट हमारा बच्चों का 83,836 का है और इसके लिए हमने 441 वैक्सीनेशन बूथ पूरे जिले में बनाए हुए हैं और हमारे 6 ट्रांजिट पॉइंट्स हैं जहां हम दूसरी स्टेट के साथ जुड़ते हैं। इन ट्रांजिट पॉइंट्स में हमने विशेष बूथ बनाए हैं ताकि कोई बच्चा जो बाहर जा रहे हैं वो छूट ना जाए और उनको पोलियो की दवा मिल जाए।
1: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि 70% पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान व उप प्रधान चुनाव जीते हैं। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि नगर निकायों में भी भाजपा का दबदबा है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार जानबूझकर जिला परिषद, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव टाल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनादेश का अपमान करने वाले अधिकारियों की सूची बनाई जा रही है और भाजपा इस बारे में सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ेगी।
3: नगर परिषद में 26 में से 18 में अभी तक चुनाव कराए गए हैं। ब्लॉक समिति में हिमाचल प्रदेश में 92 में से 47 जगह चुनाव करवाए गए हैं और उसमें 31 जगह भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई और 16 जगह कांग्रेस को जीत मिली। लेकिन अभी तक भी जहां बहुमत भारतीय जनता पार्टी का वहां पर भी ब्लॉक समिति के चुनाव को अभी तक डेट नहीं दी गई है। बार बार आग्रह करने के बावजूद डेट नहीं। जिला परिषद हिमाचल प्रदेश में 12 है, 12 में से 3 जगह चुनाव अभी तक संपन्न हुआ है और बाकी जगह अभी तक चुनाव की तारीख नहीं दी जा रही।
1: इस बीच प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर लोकतांत्रिक परंपराओं व संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। आज हमीरपुर में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों से वंचित रखना लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। राजेंद्र राणा ने कहा कि कांग्रेस सरकार जानबूझकर जिला परिषद व स्थानीय निकायों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव में देरी कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य सरकार के इस रवैये का विरोध करेगी और जनता के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। राणा ने राज्य सरकार से पूछा है कि इन चुनावों में देरी किस आधार पर और किस उद्देश्य से की जा रही है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र में भी रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने आज हमीरपुर के बहुतकनीकी महाविद्यालय बड़ू में रोजगार मेले के उद्घाटन अवसर पर बताया कि शिक्षण संस्थानों में नए रोजगार परक कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। राजेश धर्माणी ने युवाओं से अपने कौशल का विकास करने का आह्वान किया और कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि रोजगार मेले में 32 बड़ी कंपनियों की मौजूदगी युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज चंडीगढ़ से ओमान के लिए चेरी व प्लम की निर्यात खेप को हरी झंडी दिखाकर हवाई मार्ग से रवाना किया। इनमें शिमला जिले के जड़ोल, टिक्कर व बागी क्षेत्र के 6 प्रगतिशील किसानों द्वारा उगाई गई 400 किलो चेरी व 400 किलो प्लम शामिल हैं। जगत सिंह नेगी ने बताया कि हिमाचल ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर कदम बढ़ाए हैं और मध्य पूर्व व खाड़ी के देश हिमाचल के फलों के लिए एक बड़े निर्यात बाजार के रूप में उभर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 जून को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 135वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज चंबा में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। राजीव भारद्वाज ने लोक निर्माण विभाग को 56 सड़क परियोजनाओं की DPR जल्द तैयार करने को कहा। उन्होंने चंबा जिले में विद्युत आपूर्ति नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए चलाई जा रही पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना की प्रगति पर असंतोष जताया और अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सांसद ने बताया कि जिले में विद्युत नेटवर्क सुदृढ़ करने के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश भाजपा ने आज जिला परिषद, बीडीसी और नगर निकायों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव में देरी को लेकर राज्य के अनेक स्थानों पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए। शिमला में हुए धरना प्रदर्शन में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन सहित अन्य पार्टी नेताओं ने भाग लिया। हर्ष महाजन ने चुनाव में देरी को असंवैधानिक बताया और कहा कि यदि चुनाव प्रक्रिया जल्द पूरी नहीं की गई तो भाजपा प्रदेश भर में आंदोलन करेगी।
4: ये बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चुनी जिला परिषद मेंबर, चुनी बीडीसी, चुने कमेटी के मेंबर, सबका इन्होंने मजाक उड़ाया। और ये कहना कि इनकी भूमिका एक ही दिन की होती है, ये तो मैं समझता सुखू जी की बहुत बड़ी भूल है। ये चुनाव नहीं कराए, अब जितनी जल्दी हो सकता है तो एक बड़ा आंदोलन इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी करेगी।
1: इस दौरान हर्ष महाजन की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए तुरंत आईजीएमसी ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार हर्ष महाजन को डिहाइड्रेशन और कम रक्तचाप की समस्या हुई, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य सामान्य है। सोलन में चल रहे राष्ट्रीय शूलिनी मेले के दूसरे दिन आज पौराणिक ठोडा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रदेश की लोक परंपरा, वीरता और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इस खेल में 6 टीमों ने भाग लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए स्थानीय लोगों सहित बड़ी संख्या में पर्यटक भी ठोडा मैदान में मौजूद रहे। इस दौरान ढोल नगारों की गूंज, रणभेरी की धुन और खिलाड़ियों के उत्साह से माहौल उत्सवमय बना रहा। मेले में आए लोगों ने ठोडा प्रतियोगिता को संस्कृति का प्रतीक बताया।
5: ठोडा है हमारा ये कल्चर पुराना, हजारों सालों से चलता आ रहा है और ये देव कार्य होता है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें हम ये ठोडा मनाया जाता है। बड़ा धूमधाम से तीर कमान से दूसरे को तीर निशाने लगाएंगे। 11 प्लेयर होते हैं इसके अंदर, तो उसी हिसाब से प्राइज दिए जाएंगे। फिर उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज देंगे। हमारा ये कल्चर है, बहुत ही पुरानी संस्कृति है।
1: चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के उरेई समरा सड़क मार्ग पर आज एक कार के खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक घायल महिला की अस्पताल में मृत्यु हुई। ये सभी लोग आसपास के गांवों के रहने वाले थे और समरा में एक जातर मेले में भाग लेने जा रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी इस दुर्घटना पर दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का किया ऐलान। 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर सेट लगाने की घोषणा। पोलियो रविवार के तहत कल गरीब से 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 6 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पल्स पोलियो की।
0: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। तो श्रोतो कहते हैं ना कि वक्त जो है वो कभी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, वक्त हमेशा चलता रहता है। वक्त का पहिया जो है वो बिल्कुल चलता रहता है और वक्त के साथ हम सभी को भी चलना जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाता है श्रोतो। और समय की एक बात जो है ना वो बहुत मतलब जुड़ी हुई है। ये बात हम बिल्कुल अभी हम भूल गए थे कि हमें फेसबुक लाइव भी करना है, तो वो भी कर देते हैं। और जो बात हम भूले हैं वो बात हम याद ज़रूर करना चाहेंगे श्रोतों। फिलहाल आप बने हुए हैं वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सचिन कपूर के साथ जो है वो सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और मुझे लगता है कि अब जाने का समय तो हो ही चुका है श्रोतों। तो श्रोतो अब वक्त हो चुका है आप सभी से अलविदा लेने का, आप सभी को टाटा बाय बाय करने का, आप सभी को ये कहने का कि खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वक्त के साथ चलिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है श्रोतों वक्त के साथ चलना। देखिए वक्त का पहिया जो है ना वो घूमता ज़रूर है और वक्त की एक बात बड़ी खास है, वो बात ये है कि वक्त जो है वो एक जैसा नहीं रहता है, समय जो है वो एक जैसा नहीं रहता है। श्रोताओं, समय बदलता ज़रूर है। चलिए, आज अगर हमारा बुरा समय है तो ये ना सोचिए कि हमारी ज़िंदगी ऐसी ही बीतेगी या हमारी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी। नहीं, अगर आज हमारा बुरा समय है तो कल को हमारा अच्छा समय भी जो है वो ज़रूर आएगा। श्रोताओं, वक्त की एक बात मैंने पहले कही कि ऐसी है कि एक जैसा वक्त नहीं रहता है, वक्त बदलता ज़रूर है, बदलाव ज़रूर लाता है। इसलिए समय के साथ बदलना ज़रूरी है, अपने आप में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, मैं सचिन कपूर आप सभी से ले लेता हूँ अब अलविदा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रेडियो गुंजन को यूँ ही सुनते रहिए और फेसबुक के माध्यम से भी हमारे साथ यूँ ही जुड़ते रहिए। नमस्ते धर्मशाला।

नमस्कार दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के चमकते सितारों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं आपके अपने शहर कांगड़ा में। तो याद रखिएगा, 28 जून 2026 रविवार को सुबह ठीक 9 बजे से जीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा में ये भव्य शाइनिंग स्टार फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7710 7712 या फिर 7888891936। धन्यवाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग माँ।
0: हाँ तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा माँ, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों समझियो के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया।
1: खैर
0: कोई बात नहीं
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं कुछ नहीं, पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई गहने गाड़ी 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो
0: देना।
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र
4: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों
4: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
6: मेरा
10: क्या कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा।
6: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
11: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
12: मोहित मेरा इस्तीफा।
13: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है?

खुशी खामोश है, मौत मातम कर रही है, जिंदगी खामोश है। दिल की महफिल में सनम को जब कभी आवाज दी, बोल उठा गम का अंधेरा रोशन।

नमस्कार दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के चमकते सितारों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं आपके अपने शहर कांगड़ा में। तो याद रखिएगा, 28 जून 2026 रविवार को सुबह ठीक 9 बजे से जीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा में ये भव्य शाइनिंग स्टार फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7710 7712 या फिर 7888891935। धन्यवाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग माँ।
0: हाँ तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा माँ, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों सैमियों के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर कोई बात नहीं
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं कुछ नहीं, पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई गहने गाड़ी 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहां किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र
4: Excuse me, sir. ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों?
4: सर यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके.
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
6: मेरा
10: क्या कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
6: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
11: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
12: मोहित मेरा इस्तीफा।
13: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार।
12: सॉरी यार,
13: काम कीजिए आप लोग।
11: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला था।

91.2 मेगाहर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: अरे भाई प्यार के चक्कर में तुम लोग और कितने चक्कर लोगे?
1: तो श्रोताओ आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

नमस्कार दोस्तों, सिटी यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी लेकर आया है। ये यूनिवर्सिटी हमेशा से ही देश के कोने कोने से आने वाली प्रतिभाओं को सराहती रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12वीं को बेहतरीन अंकों के साथ पास करने वाले हिमाचल प्रदेश के चमकते सितारों को सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं आपके अपने शहर कांगड़ा में। तो याद रखिएगा, 28 जून 2026 रविवार को सुबह ठीक 9 बजे से जीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ा में ये भव्य शाइनिंग स्टार फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7710 7722 या फिर 7888891935। धन्यवाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आ गए, बैठो।
1: मॉर्निंग माँ।
0: हाँ तो कैसा रहा लड़की वालों से मिलना?
2: बहुत अच्छा माँ, जितनी अच्छी लड़की उतना ही अच्छा उनका परिवार। बस अब एक कप चाय मिल जाती तो आज का दिन बन जाता।
1: क्यों समझियो के यहाँ पे चार कप चाय पी के तुम्हारा मन नहीं भरा? रमेश काका दादा के लिए एक कप चाय लाना।
0: आजकल तो लोग इंटरनेट पर देखकर शादी कर लेते हैं। हमारे लड़के ने लड़की और उसके परिवार से मिलवा तो दिया। खैर कोई बात नहीं
2: माँ, सब ठीक तो है ना? अगर मन में कुछ है तो बोलो।
0: नहीं कुछ नहीं, पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी।
2: हाँ हुई ना लेन देन की बात, तो बात तय हुई गहने गाड़ी 10 लाख रुपए नगद। मुझे लगा कहीं और देना होगा तो।
0: देना?
2: उनकी हीरे जैसी बेटी ले रहे हैं, इतना देना तो बनता है ना माँ।
0: चलो ये भी अच्छा है।
3: सच्चे इंसान को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका वक्त खुद गवाही देता है। मित्र जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि बिना वजह यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जो आज तुम्हारा संकट है कल वही रास्ता बनेगा। दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है इंसान खुद के कर्मों को सही करने में ध्यान दे। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसा ही तुम्हें संसार दिखेगा। मित्र
4: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
5: क्यों
4: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
6: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
7: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
8: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
9: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
6: मेरा
10: क्या कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
6: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन?
11: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
12: मोहित मेरा इस्तीफा।
13: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार? सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग।
11: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: खाने में क्या बनाई हो माँ?
2: जो तुम बोला था वही बनाई हूँ बेटा।
1: क्या बोला था मैंने?
2: इतना पूछी थी फिर भी तुम कुछ नहीं बोला था।

रंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो आइए श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।